अनुराधा, ओ अनुराधा, क्यों री पगली? अरे इस तरह रोने से क्या होगा? ओ, तुम आंसू पोंछ रही हो, मगर मुझे हिचकियों की आवाज तो सुनाई दे रही है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक कहानी सुना। बहुत दिन हुए, एक बार

मगर सबसे ज्यादा दुख जानती हो किसे हुआ था? अनुराधा जैसी एक राधा थी, बिचारी बिचारी रो रो कर कहती थी।

भारत की गाथा हमने कितने गीतों, कितने काव्यों और कितने ही लेखों में पढ़ी है, पर हम अपने इस देश के अनेक हिस्सों की खूबसूरती से ठीक से वाकिफ नहीं हो पाते। इसलिए इस बार हम आपको ले जा रहे हैं मिलाने उन संस्कृतियों से जो हमारे भारत को और सुंदर बनाती हैं। स्वागत है आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की अगली कड़ी में, जहां सबसे पहले हम आपको ले जा रहे हैं प्रकृति के अति धनी प्रदेश मेघालय। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य है। मेघालय का निर्माण असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किया गया। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। पूर्ण राज्य मेघालय 21 जनवरी 1972 को बना। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय, अर्थात बादलों का घर। मेघालय मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ खासी, जैंतिया और गोरो आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यतः रहते हैं। मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग में खासी और जैतिया पहाड़ियाँ और एक विशाल पठारी क्षेत्र है। यहाँ विस्तृत मैदान, पहाड़ियाँ, नदी और घाटियाँ हैं। पहाड़ की तलहटी पर समतल भूमि की संकरी पट्टी बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है। जब भारत अंग्रेजों के गिरफ्त में था तो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा मेघालय भी बना। यहाँ के अनेकों नामों में से एक नाम जिसने ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब देने का दम दिखाया, वे थे पा तोगन निंगमिंसा, जो एक बेहद हिम्मतवान योद्धा थे। उनका जन्म मेघालय के एक गांव में हुआ। सन 1872 में कुछ अंग्रेजी सैनिकों ने गैरो हिल्स में प्रवेश कर लिया और एक गांव में अपना पड़ाव डाला। इस पर उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ अंग्रेजों पर हमला कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को तो मार दिया, पर ब्रिटिशर्स की बड़ी ताकत का वे सामना नहीं कर पाए और शहीद हो गए। आज भी हर साल 12 दिसंबर को गैरो हिल्स में लोग उन्हें याद करते हैं तथा मेघालय की सरकार भी उस दिन को हर वर्ष मनाती है।

मेघालय प्रधानतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल और मक्का हैं। इनके अतिरिक्त संतरे, अनानास, केला, कटहल और आलू बुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। संस्कृति ही हर प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करती है। चलिए आपको कुछ बताते हैं यहाँ की संस्कृति के बारे में। ये क्षेत्र जनजातीय संस्कृति और लोक परंपरा से समृद्ध है। घूमने के लिहाज से मेघालय राज्य में अनेक गुफाएं, पर्वत शिखा, बाग, झील, रिसोर्ट स्थल, खूबसूरत दृश्यावलियाँ, गर्म पानी के सोते और जलप्रपात है। यहाँ प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल हैं शिलोंग, उमियाम झील, चेरापूंजी, जाक्रियम, मैरोंग, जोवाई, नार्तियांग, तुरा, सीजू और बलपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान।

चलिए अब चलते हैं लेने आनंद यहाँ के त्योहारों का। मेघालय का पोंबलांग नोंगक्रेम खासियों का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है जो 5 दिन तक मनाया जाता है। ये शिलोंग से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्मिथ नामक गांव में मनाया जाता है। शाद सुन मिनसीव खासियों का एक और महत्वपूर्ण पर्व है। ये त्योहार हर साल अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शिलोंग में मनाया जाता है। गोरो आदिवासी सलजोंग नामक देवता के सम्मान में अक्टूबर नवंबर में वांगला नामक त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार लगभग 1 हफ्ते तक मनाया जाता है। अगर वक्त आपके पास है तो देखने के लिए मेघालय में बहुत कुछ है। यहाँ पर प्रकृति अपने भव्य रूप में उपस्थित है। राजधानी शिलोंग में भी अनेक सुंदर स्थल हैं, जिसमें वॉट्स लेक, उमियाम झील, लेडी हैदरी उद्यान, पोलो ग्राउंड, मिनी चिड़ियाघर, हाथी झरना और शिलोंग की पर्वत चोटी प्रमुख है। शिलोंग की पर्वत चोटी से पूरे नगर का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ का गोल्फ कोर्स देश के अच्छे गोल्फ कोर्स मैदानों में से एक है। मेघालय स्थित शिलोंग का मनोरम प्राकृतिक परिवेश पूरे वर्ष अवकाश बिताने के लिए उत्तम है। गाड़ी से जाने योग्य पर्वतीय स्थानों में से एक माने जाने वाला शिलोंग में ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां इतना अधिक पैदल नहीं चलना होता। शिलोंग की उपयुक्त सुविधाएं, मनोरम दृश्य, खुशहाल लोग, बादल और लंबे पाइन के पेड़, पर्वत, घाटियां, दलदल और एक शानदार गोल्फ कोर्स शिलोंग को एक अच्छा गंतव्य बनाते हैं। इसके अलावा घूमने के लिए पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले में स्थित नोकरेक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व तूरा भी है। नोकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है और यहाँ हाथी तथा हूलॉक गिब्बन सहित अनेक प्रकार की वन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस पार्क में सिट्रस इंडिका की अत्यंत दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, जिसका नाम है मेमोंग नारंग। नोकरेक को जंगली मनुष्य का घर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थित है बालपकराम नेशनल पार्क, जो दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ लाल पांडा का घर माना जाता है। इसका सामान्य रूप से नाम लेसर पांडा है। ऐसे और कई दार्शनिक स्थल मौजूद है मेघालय में, जहाँ की खूबसूरती हर किसी का दिल लुभाने में सक

अब बढ़ते हैं एक और सुंदर मंजिल की ओर और आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का शाब्दिक अर्थ है उगते सूर्य की भूमि। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न राज्य है, किंतु चीन राज्य के एक भाग पर अपना अधिकार दक्षिणी तिब्बत के रूप में जताता है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी और असमिया है, साथ ही यहाँ अंग्रेजी भाषा भी लोकप्रिय है। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और आसाम से भी मिलती है और इस राज्य में पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भागों की ओर है। कोमेंग, सुबनसिरी, सियोंग, लोहित और तिरप आदि नदियाँ इन्हें अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। अगर बात करें इतिहास की तो अरुणाचल प्रदेश का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडर है जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईसवी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। संवैधानिक रूप से ये असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इन सब के बाद 20 फरवरी 1987 को ये भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। ब्रिटिश काल के दौरान अरुणाचल के लोगों ने भी उनसे लोहा लिया, जिसमें से एक थे ताजी मिद्रेन। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ी तथा 1955 में 3 ऑफिसर्स को मार गिराया। उन्होंने ब्रिटिश राज के विस्तार को रोकने के लिए अपने साथी मिश्मी आदिवासियों को एकत्रित करके काम किया, पर दिसंबर 1917 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1918 में वे अपना कर्तव्य निभाते शहीद हो गए।

भूगोलिक आधार से देखें तो अरुणाचल का अधिकतर भाग हिमालय से ढका है, लेकिन लोहित, चांगलांग और तिरप पतकई पहाड़ियों में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करता है। ये पर्वतमाला आगे नागालैंड की ओर मुड़ जाती है और भारत और म्यांमार के मध्य चांगलांग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक सीमा का कार्य करती है। अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ ऑर्चिड फूल भी पाए जाते हैं और कई हरी भरी खातियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक जीवन की ओर। यहाँ के लोकगीत, संगीत, हस्तशिल्प सभी कुछ मन लुभावना है। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के लोगों की अपनी अलग अलग पगड़ी एवं परिधान है। बुनाई कला का यहाँ अपना महत्व है। हर जनजाति की अपनी विशिष्ट शैली है। नृत्य यहाँ के सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है तथा लोसर, मेपिन एवं सोलुंग यहाँ के प्रमुख जनजातीय पर्व हैं। अरुणाचल के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदी समुदाय का मापिन और सोलंगू, मोनपा समुदाय के त्योहार दुसार, अपनानी समुदाय का द्री, तगिनो समुदाय का सी दियोंगे, दोन्याई आदि भी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश भी अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह पर्यटन का एक केंद्र है तथा राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थानों में त्वांग, दिरांग, बोमटिला, ईटानगर तथा जगहों में पापुरपेट, त्वांग मठ आदि हैं। अरुणाचल स्थित एक दार्शनिक स्थल ईटा किला भी है, जिसका निर्माण 14-15वीं शताब्दी में कराया गया था। इसके नाम पर ही इस जगह का नाम ईटानगर है। इस किले से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। किले को देखने के बाद सैलानी पौराणिक गंगा झील भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर भी है। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी यहाँ की यात्रा कर चुके हैं। इस मंदिर की छत पीले रंग की है और इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। मंदिर में एक संग्रहालय भी है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है, जहां पूरे अरुणाचल प्रदेश की झांकी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यहां पे लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुएं, वाद्य यंत्र, सुंदर कपड़े, हस्त निर्मित वस्तुएं और केन की बनी सुंदर कलाकृतियों का संग्रह देखा जा सकता है। संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है। अन्य स्थानों में दोन्य पोलो विद्या भवन, विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान और अभियांत्रिकी संस्थान प्रमुख हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के पश्चात अब हम आ पहुंचे हैं हमारी अगली मंजिल की ओर, यानी मिजोरम। मिजोरम भारत गणराज्य में एक पर्वतीय प्रदेश है। मिजोरम के पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश है। पश्चिमोत्तर में त्रिपुरा, उत्तर में असम तथा पूर्वोत्तर में मणिपुर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बना। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये आसाम का एक जिला था। मिजोरम में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है और इस क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं। ये क्षेत्र विभिन्न प्रजाति के प्राणियों तथा वनस्पतियों से संपन्न है। चलिए पढ़ते हैं मिजोरम के निपुण इतिहास की ओर। 1891 तक उत्तर का लुशाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग पश्चिम बंगाल के अधीन रहा। 1858 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया, जिसका नाम लुशाई हिल्स जिला रखा गया। ये असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत में चले स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा मिजोरम भी बना। यहाँ के रोपुल्लानी मिजोरम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण नाम है। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ समझौता नहीं किया। सन 1993 में उन्हें जेल में डाल दिया गया था, जहाँ एक साल बाद उनकी मृत्यु हो गई।

मिजोरम की पहाड़ियाँ घने सदाबहार वनों से ढकी हैं, जिसमें चंपक, आयरनवुड और गुर्जुम जैसे मूल्यवान इमारती लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। इन जंगलों में हाथी, बाघ, भालू, हिरन और जंगली भैंसों समेत कई जंतुओं का पर्यावास है। कृषि यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। मिजोरम प्रदेश के लगभग 80% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ सीढ़ीदार खेती और झूम खेती का प्रचलन है। अनुमानतः 21 लाख हेक्टेयर भूमि में 6.3 लाख हेक्टेयर भूमि बागवानी के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ एंथूरियम, बर्ड ऑफ पैराडाइज, आर्चिड, गुलाब तथा कई अन्य मौसमी फूलों की खेती भी होती है। मसालों में अदरक, हल्दी, काली मिर्च भी यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ के लोग पाम ऑयल, जड़ी बूटियाँ तथा सुगंधित पौधों की खेती भी बड़े पैमाने पर करते हैं। चलिए अब सांस्कृतिक रूप से जानते हैं मिजोरम को। यहाँ के सांस्कृतिक जीवन में नृत्य और संगीत मूल तत्व हैं। यहाँ के त्योहारों में ईसाई धर्म के पर्व और स्थानीय कृषि त्योहार जैसे चपचारकुट, पालकुट और मिमकुट शामिल हैं। आइजोल में पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय का परिसर स्थित है। मिजो और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख व राजकीय भाषाएं हैं। अपनी लिपि न होने के कारण मिजो भाषा के लिए रोमन लिपि का उपयोग होता है। चलिए अब मनाते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहार। मिजो नागरिक मूलतः किसान हैं, अतः उनकी तमाम गतिविधियाँ तथा त्योहार भी जंगल की कटाई करके जाने वाली झूम खेती से ही जुड़े हुए हैं। त्योहार के लिए मिजो में कुट शब्द का प्रयोग होता है। मिजो लोगों के विभिन्न त्योहारों में से ज्यादातर तीन प्रमुख त्योहार चपचार, मिमकुट और थालफोंग कुट मनाए जाते हैं। पर्यटन के लिहाज से मिजोरम एक अत्यंत सुंदर जगह है। समुद्र तट से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर आइजोल मिजोरम का एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। म्यांमार की सीमा के निकट चम्फाई एक सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ तामदिल एक प्राकृतिक झील भी है, जहाँ मनोहारी वन है। ये आइजोल से 80 किलोमीटर और पर्यटक स्थल सैतुअल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वानतांग जलप्रपात मिजोरम में सबसे ऊंचा और अति सुंदर जलप्रपात है, जो बॉक के निकट जिला पार्क में अल्पाइन पिकनिक हट तथा बेरो तुलांग में मनोरंजन केंद्र भी बनाए गए हैं। और भी अनेक स्थलों की मौजूदगी में आपका समय मिजोरम में कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा।

चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारी अगली मंजिल की ओर, जिसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यानी कि नागालैंड, जहां आपको सभी अन्य पूर्वी प्रदेशों की भांति खूबसूरत प्रकृति और अनेक सांस्कृतिक रंग मिलेंगे। आइए जानते हैं कुछ यहाँ के बारे में। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का 16वां राज्य बना था। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर है। इसकी राजधानी कोहिमा है। असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्य का क्षेत्र अधिकांशतः पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम सरमती है, जिसकी ऊंचाई 3,840 मीटर है। ये पर्वत श्रृंखला नागालैंड और म्यांमार के मध्य एक प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्माण करती है। 12वीं-13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ, लेकिन इससे इन लोगों के रहन सहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन पर ये राज्य ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में ये क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। ये नगा हिल्स त्वेनसांग क्षेत्र कहलाया। ये प्रशासन नागरिकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और यहाँ असंतोष पनपने लगा। अतः 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। भूगोलिक नजर से देखें तो नागालैंड का लगभग समूचा हिस्सा पर्वतीय है। उत्तर में नागा पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र घाटी से अचानक 610 मीटर की ऊंचाई तक उठती हैं और इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में इनकी ऊंचाई 1,800 मीटर तक हो जाती है। म्यांमार सीमा के पास ये पहाड़ियाँ पटकोई पर्वत श्रृंखला से मिल जाती हैं और यहाँ इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है, जिसकी ऊंचाई 3,826 मीटर है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना भारत के किसी भी प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर बात करें नागालैंड की, तो ये भी मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। राज्य में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। चावल यहाँ का प्रमुख भोजन है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 70% में धान की खेती होती है। यहाँ मुख्यतः स्लेश और बर्न खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय तौर पर झूम के नाम से जाना जाता है। नागालैंड राज्य की लगभग 90% जनता कृषि में लगी है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, गन्ना और आलू हैं।

0: चलिए अब भविष्य को संवारने वाले क्षेत्र यानी शिक्षा जगत की बात करते हैं और जानते हैं नागालैंड में शिक्षा के बारे में। यहाँ कई प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ कई स्नातक स्तर के महाविद्यालय भी हैं, जिनमें सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, कोहिमा साइंस कॉलेज, कोहिमा लॉ कॉलेज, नागालैंड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पब्लिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स आदि शामिल है। कोहिमा में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का परिसर भी स्थित है तथा नागालैंड में नागालैंड विश्वविद्यालय है। इसके पश्चात आपको अब लिए चलते हैं अनोखे नागालैंड की अनोखी संस्कृति के समीप। नागालैंड में जनजातीय संगठन में कोलियाक के निरंकुश अंग और सेमा व चांग के आनुवंशिक मुखिया से लेकर अंगामी, आओ, लोहोरा और रिंगमा की लोकतांत्रिक संरचनाओं जैसी भिन्नताएं पाई जाती हैं। नागा समाज में महिलाओं को अपेक्षाकृत ऊंचा और सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। वे खेतों में पुरुषों के ही समान शर्तों पर काम करती हैं तथा जनजातीय परिषदों में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। प्रत्येक जनजाति के अपने त्योहार होते हैं। यहाँ नागा नृत्य, संगीत, गीत और लोकगीतों में जीवन के उल्लास की झलक मिलती है। नागा भाषा एक जनजाति से दूसरी जनजाति और कभी कभी तो एक गांव से दूसरे गांव में भी अलग हो जाती है, तथापि इन्हें तिब्बत बर्मा भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है। संगीत और नृत्य नागा जीवन के मूलभूत अंग हैं। वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता का गुणगान करने वाले लोकगीत और लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इसी तरह नृत्य हर उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर त्योहार पर दावत, नाच गाना और उल्लास होता है। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं सेक्रनई, मुआत्सु, तुकुए मुंगा और तुलनी। चलिए अब चलते हैं नागालैंड का थोड़ा भ्रमण करने, यानी कि यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में जानने। नागालैंड में देशी विदेशी लोग प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आते हैं। पर्यटन स्थलों में द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान, राज्य संग्रहालय कोहिमा व दीमापुर के चिड़ियाघर तथा कछारी शासकों की पुरानी राजधानी शामिल है। घूमने के लिए आप दीमापुर, किफरे, कोहिमा, मुकुकंचुंग, मोन, वोखा आदि जगहों पर प्रकृति के सुंदर रूप का लुत्फ उठा सकते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की सभी जनजातियां एक स्थान पर आकर उत्सव मनाती हैं और अपनी पारंपरिक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और शिल्पगत चीजों का प्रदर्शन करती और बेचती हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग समय पर यहाँ तीन पारंपरिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो है कोहिमा जिले के तोफेमा में मनाए जाने वाला सिक्रनई, लोंगलेंग उपमंडल के पोगो में मोन्यू तथा मोकोकचुंग जिले के चुचुयिमलाक में मुआत्सु। रंग बिरंगे त्योहारों से, ऊंचे नीचे पहाड़ों से, झरनों से, गलियारों से होते हुए हम आ पहुंचे हैं इस खूबसूरत सफर के अंत की ओर। उत्तर पूर्वी प्रदेश कई महान व्यक्तियों जैसे कि मोजेरेबा, संती पादा रॉय, सुभाष चंद्र पाऊ, रूपवेल नानी आदि की जन्मभूमि भी है। हम सलाम करते हैं इन सभी को और अपने भारत वर्ष को भी, और साथ ही साथ लेते हैं आपसे अलविदा। सुनते रहिए 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी। जय हिंद।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं, तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: खबरों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

0: है, जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष ख्वाबों का सफर इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ खास अल्फाबेट लेते हैं और उसके पूरे गाने आपको शो में सुनाते हैं। तो आज हम लोग एम अल्फाबेट से बहुत सारे गाने आपको 50s एंड 60s के सुनाने वाले हैं, वो भी ओल्ड बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हैं, जैसे कि सरस्वती चंद्र 1968 में एक फिल्म आई थी, उसके बाद हिमालय की गोद 1965 में एक फिल्म आई थी, 1962 में एक फिल्म आई थी मन मौजी, फिर 1968 में एक फिल्म आई थी आदमी, और 1959 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ब्लैक कैट। उसके साथ ही हम दोनों 1961 में यह रिलीज हुई थी फिल्म बरसात की रात, 1960 में रिलीज हुई थी, और नागिन 1954 का ओल्ड वर्शन। उसके बहुत सारे न्यू वर्शंस आपने देखे होंगे, इस नाम से काफी फिल्में बनी है। तो चलिए हम लोग फिल्मों के बारे में बाद में बात करते हैं, अब सीधे मैं आपको ले चलता हूँ आज के इस कार्यक्रम की तरफ और बात करते हैं ख्वाबों के सफर में। और आज के इस कार्यक्रम के खास हमारे मेहमान हैं अरुणा जी, जो रायपुर से पधारे हुए हैं, और उनसे हम लोग बातें करेंगे और उनके पास बहुत ही अच्छे इन फिल्मों के जो नाम हमने जो बताया आपको उसमें एम अक्षर वाले गाने बहुत हैं, तो एक एक करके गाने हम अरुणा जी से सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा उनके रूपरेखा क्या है, क्या भाव है उन फिल्मों के गीतों का जो अक्षर एम से शुरू होता है। तो आइए आप सभी की तरफ से अरुणा का बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार रमेश जी एंड सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अरुणा, और एक नए नए सॉन्ग हम लेके आए हुए हैं, और आशा करती हूँ कि मैं आप सबको इन सब के बारे में थोड़ा सा जुड़ सकूं।
0: तो सबसे पहला गाना कौन सा आप सुनाना चाहेंगे?
1: आप सभी तो जानते ही हैं कि बेटियों को पराई धन कहा जाता है, तो एक बेटी की जब शादी पक्की हो जाती है तो वह सोचती है कि मेरी जो सासू माँ हो वो माँ की जैसे मिली, और मेरे पिताजी हो, मेरे जो ससुर जी हो वो पिता जैसे मिली। तो वैसे ही उसमें से एक सॉन्ग है, मैं तो भूल चली बाबुल का देश।
0: अरुणा जी काफी अच्छी बात आपने बताया, और जैसे कि आपने भाव प्रकट किए हैं, और इन भाव से यही लगता है कि कहीं ना कहीं लड़की को जो है अपने माता पिता बहुत याद रहते हैं, और वो ससुराल में जाकर भी अपने माता पिता को नहीं भूल पाती है। तो सरस्वती चंद्र इस एल्बम का, इस फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत है जो पॉपुलर गाना है, और इसमें कुमुद नाम का करियर जो है, कुमुद नाम का कैरेक्टर जो है सरस्वती चंद्र में है, जिसको नूतन का, नूतन ने इस फिल्म में ये रोल किया है कुमुद का, और उनकी शादी जो है किसी एक अच्छे लड़के के साथ कर दिया जाता है, लेकिन वो रद्द हो जाती है, तो उसकी शादी एक शराबी से की जाती है। तो यहीं से कहानी में एक बदलाव आता है, और बहुत सालों के बाद सरस्वती चंद्र का सामना फिर से कुमुद से होता है। तो ये किस तरह से है ये कहानी, हम लोग फिल्म देखते ही आप समझ जाएंगे। तो आइए इस फिल्म का पहला गाना आपको कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाते हैं, मैं तो भूल चली। ये गाना जो है इंदिवर साहब ने लिखा है और लता मंगेशकर जी ने इसे गाया है। तो कल्याण जी आनंद जी का बहुत ही सुंदर संगीत है इस गीत में, आइए इस गीत का लुत्फ

0: ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम का पहला गाना आपने सुना। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और ये गाना बहुत ही सूदिंग था, क्योंकि जो भी व्यक्ति सुनता है उसकी पहली लाइन उसको याद हो जाती है। तो ये एक ओल्ड फिल्मी गानों का ये खूबसूरती है कि आपको वो गाने का पहला लाइन ऑटोमेटिकली याद हो जाता है म्यूजिक के साथ में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं 1965 की बात करना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हिमालय की गोद में। ये एक आदिवासी डावलों की कहानी बताई गई है और इसमें मनोज कुमार जो है डॉक्टर सुनील का किरदार निभाता है और माला सिन्हा जो है फुलवा नाम की एक आदिवासी लड़की की रोल इसमें बताया गया उनको। और ऐसा होता है कि डकैत जो वहां के होते हैं आदिवासी डकैत, वो डॉक्टर सुनील को किडनैप कर लेते हैं और उसकी उसको बहुत पीटते हैं, मारते हैं और उसको ऐसे तकलीफ देकर छोड़ देते हैं। और ऐसे में माला सिन्हा जो फुलवा का रोल अभिनय करती है उस फिल्म में, वो वहां पर आती है और मनोज कुमार यानी डॉक्टर सुनील को बचाती है। तो इस तरह की ये कहानी बताई गई है और आदिवासियों का जीवन शैली कैसा है, उनको किस तरह का तकलीफ होता है, क्या मुश्किलें आती हैं, वो सारी इस फिल्म में बताने की कोशिश की है। तो आइए अरुणा जी से बात करते हैं। इस फिल्म में एक एम अक्षर का गाना है, वो कौन सा है आप बताइए।
1: इस फिल्म में मनोज जी और माला जी दोनों ही रहते हैं यहाँ पे, और मनोज जी माला जी को प्यार करने से मना करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार ये प्रकृति की हवा वापस लौट कर नहीं आती है, उसी प्रकार ये ख्वाब भी प्यार बनकर नहीं आएगी। और इसमें गाना चलता है, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब में तू प्यार ना कर।
0: जी जी जी अरुणा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया और एम अक्षर वाला है, इसलिए हम सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को। और जिस गीत को आपने याद किया है उसे कमर जलालाबादी साहब ने लिखा था। मुकेश की खूबसूरत आवाज में ये गीत है, कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत से सजा हिमालय की गोद में इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना। अभी आप

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफी अच्छी बातें हो रही हैं और ओल्ड फिल्मों की जो बातें हैं वो अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है। आज भी उनके स्टोरीज को देखने के बाद उस स्टोरीज को लेकर नए नए फिल्मों में उसको थोड़ा सा मिक्सिंग करके दिखाया जाता है, थोड़ा सा क्लाइमेक्स करके दिखाया जाता है। तो वही एक और फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा। 1962 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मन मौजी। जी हाँ, ये फिल्म जो है अपने आप में कमाल का फिल्म था और किशोर दा ने इसमें काम किया है। प्राण, अचला सचदेव, कुमारी नाज इस फिल्म के एक्टर्स रहे हैं। इस फिल्म में राजा नाम का एक किरदार को बताया गया है और बार बार अपराध करता है जिससे उनकी बहन जो है वो नाराज रहती है और रानी उससे रिश्ता तोड़कर डॉक्टर मोहन के घर में काम करने का फैसला करती है। हालांकि डॉक्टर मोहन को रानी और उनके भाई के बारे में सच्चाई का पता चलता है। तो इस तरह से ये कहानी जो है एक बार बार जो अपराध करता है उस व्यक्ति का बताया गया है। तो आइए, इस फिल्म में भी एक गाना है जो M अक्षर से शुरू होता है।
2: रमेश जी ने तो सारा आपको बता ही दिया है और वो गाना है मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई रे।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये गीत बहुत ही पसंद आएगा। राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर का गाया हुआ, मदन मोहन का संगीत से सजा मन मौजी इस एल्बम से ये बहुत ही खूबसूरत गीत

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बहुत ही अच्छी अच्छी जो बातें हैं आप सुन रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा जो प्लीजेंट जो जिसको कहते हैं ओल्ड क्लासिकल मेलोडीज आप सुन रहे हैं, जो आपके दिलो दिमाग को बहुत ही सुकून पहुंचा रहे हैं। तो आइए, अगला गाना कौन सा है अरुणा जी आपके पास?
2: यहाँ पे वहीदा जी और दिलीप जी दोनों ही रहते हुए, अब वहाँ पे होता है ना ऐसा कि जब हम बहुत दर्द में हो, जब कोई परेशानी और हमारे शांत होता है तो लगता है सब कुछ वही है। तो वैसे ही दिलीप जी का एक्सीडेंट हो जाया होता है, तो वहाँ पे वहीदा जी उनका साथ देती है, तो दिलीप जी उनको कहते हैं कि तुम ही मुझे रास्ता दिखाने वाले हो, तुम ही मेरा जीवन साथी हो। और उसमें गाना चलता है, मैं टूटी हुई एक नैया हूँ।
1: जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं टूटी हुई एक नैया, ये भी गीत जो है अपने आप में कमाल का है। मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है, दर्द भरा नगमा है ये। शकील बदायूं साहब का लिखा, नौशाद का संगीत से सजा आदमी इस एल्बम से 1968 का ये गाना अभी आपके लिए।

0: मैं तुम ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है। मुमताज जी और बलराज जी इस पे किरदार है इनका। किसी की विशेषता को देखकर हमें प्यार हो जाता है और यही बात मुमताज जी पूछ बैठती है, मैं तुमसे प्यार क्यों करती हूँ।
1: जी अरुणा जी, बहुत ही प्यारी सी बात है आपने बताया इस फिल्म के गाने के बारे में। और निजार अहमद अंसारी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के कलाकार थे बलराज साहनी, मीनू मुमताज, जॉनी वॉकर। इस तरह से ये लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो इस फिल्म में जो है एक विशेष जो बातें हैं रियल लाइफ स्टोरी को बताने की कोशिश किया है, जिसमें हम लोग अपना जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय जो लेते हैं, वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम उसमें ही फंस जाते हैं, वो चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की है निजार साहब ने। तो आइए इस फिल्म का एक गाना जो अभी आपने अरुणा जी से सुना, वही गीत हम सुनेंगे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हम सबकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होता है, कभी दुख कभी सुख, लेकिन हमें हमेशा कंसिस्टेंस रहना चाहिए। वैसे ही इसमें देवानंद जी का रोल है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो सिगरेट की कस लेते हुए कहते हैं, मैं इस धुएं की तरह अपना गम उड़ाता चला गया।
2: अरुणा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी मुस्कुरा रहे होंगे। ये जो है एक हम शक्ल लोगों की कहानी है। डबल रोल है देवानंद साहब का और दोनों एक जैसे दिखते हैं और दोनों जो है एक देश सेवा में रहते हैं, सैनिक का किरदार निभाते हैं। और मुश्किल ये आती है जब एक मौत के मुंह में चला जाता है तब दूसरा उसी संदेश को उनके घर वालों को बताने जाता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो लोग यकीन कैसे करें घर वाले। तो ऐसा ही कुछ क्लाइमेक्स इस फिल्म में दिखाया गया है और साहिल लुधियानवी साहब का लिखा एक गीत है, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है, जयदेव साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत है। हम दोनों इस एल्बम से ये गाना अभी आप

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। और बातें चल रही हैं और गाने भी चल रहे हैं। एम अक्षर वाले आप खूबसूरत गाने सुन रहे हैं, एक से बढ़कर एक गाने जो है आप तक पहुंचती हैं। तो लगता है कि हमारे जीवन में कुछ इस तरह की बातें जब जुड़ जाती हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि आपने अभी जो गाना सुना वो कहीं ना कहीं आपको एक सुकून देता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, इस तरह के कई गीत हैं जो अपने आप में एक मोटिवेशन देता है हमें। और बरसात की रात एक फिल्म आई थी 1960s की, मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये फिल्म जो है एक अलग कहानी बयां करती है। और बरसात की रात में युवक युवती से मिलते हैं, पर सही पहचान न होने के कारण कितना जो मुश्किलें आती हैं, हम एक दूसरे के प्रति कितने गलत सोच लेते हैं, तो वो इसमें बताने की कोशिश की है। तो चलिए, इस फिल्म में भी एक एम अक्षर से गीत शुरू होता है, तो मैं चाहूंगा कि ये अरुणा जी हमें।
2: कभी कभी लगता है ना, हमने कभी किसी को देखा है, जाना पहचाना सा लगता है। वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी को जानते नहीं हैं, पर ऐसा लगता है कि हमने आपको कहीं देखा है, और एक प्यारा सा रिश्ता भी बन जाता है। तो यही सॉन्ग है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कभी कहीं देखा है।
1: अरुणा जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया, बरसात की रात, इस एल्बम से। साहिल लुधियानवी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया एक गीत आपके लिए अभी।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नमस्कार, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं और आखिरी में एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, जैसे कि ये

0: जी हाँ, ये गाना अपने आप में कमाल का है। 1954 का नागिन इस एल्बम से है, जो नागिन पर फिल्म बनी थी। और ये फिल्म जो है, सुनील शिकार करते समय अनजाने में एक सांप को मार देता है और नागिन आती है, सुनील को डसना चाहती है, वो बच निकलता है। धीरे धीरे नागिन जो है मारने की कोशिश करती है। तो इस फिल्म में ये क्लाइमेक्स बताया गया है। प्रदीप कुमार, वैजयंती माला, जीवन और कृष्ण कुमारी इस फिल्म के अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि अरुणा जी, इस फिल्म जो गाना है आपने अभी हमने अभी जो सुना थोड़ा सा, उसके भाव क्या है?
1: वैजंती माला जी जितनी ही खूबसूरत थी उतनी अच्छी एक्ट्रेस थी, और उन्होंने उस पे कहा है कि आपकी बांसुरी की धुन में मेरा तन और मेरा मन दोनों ही मेरे वश में नहीं रहता है। और उसमें बहुत अच्छा सॉन्ग चलता है, मन डोले मेरा तन डोले।
0: जी श्रोता, आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा गीत है और आपके मन में भी वो शब्द आ रहे होंगे। चलिए, मैं और ज्यादा आपको इंतजार ना कराते हुए और इस गीत की तरफ ले चलते हैं। राजेंद्र कृष्ण जी ने इस गीत को लिखा था और लता मंगेशकर ने इसे गाया था। हेमंत कुमार साहब ने बहुत ही खूबसूरत संगीत इसमें दिया था। और इसी के साथ मैं और अरुणा जी चाहेंगे आपसे इजाजत। और कहते हैं, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ों की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को आज के शो में काफी गीत हमने सुनाए वो बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो जरूर मैसेज करके अपना प्यार जताइए। तो चलिए अरुणा जी, थैंक यू सो मच।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 的娃娃娃娃。
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

छुपाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: फुड़ेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: शिवाजी की तलवार है, लावनी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार पुराना स्तंभ जी।
1: नमस्कार मनु।
0: मैं आज फिर आ गई कहानी सुनने के लिए।
1: हाँ हाँ आओ आओ।
0: लेकिन पता है पुराना स्तंभ जी, मैं ना कल टीवी देख रही थी।
1: अच्छा।
0: और टीवी पे चाइल्ड लेबर के बारे में दिखा रहे थे, कैसे छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है और उनका बचपन पढ़ाई लिखाई से महरूम ही रह जाता है।
1: हाँ, कुछ बच्चे अपना बचपन नहीं जी पाते मनो।
0: लेकिन पुराना स्तंभ जी, कुछ एनजीओस भी इसके लिए कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि हर कोई तो एनजीओ नहीं खोल सकता, पर चाहते तो हम सब हैं कि हम कुछ करें।
1: पता है मनु, पीछे रोड के उस पार वाली बिल्डिंग में सुगंधा जी रहती हैं। उन्होंने अपने बिल्डिंग के वॉचमैन कमलेश चाचा के बेटे का स्कूल में दाखिला करवा दिया है और 2 साल से फीस, कपड़े, किताबें वही लेकर देती हैं। उसे पूरा स्कूल पास करवाने का निश्चय किया है सुगंधा जी ने।
0: बुरा मत मानिए पुराना स्तंभ जी, लेकिन उससे क्या होगा? बस एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर हम सबका भला थोड़ी कर सकते हैं।
1: मनु, उस एक बच्चे के जूते में कदम रख कर सोचो कि पढ़ाई कर पाना कैसा होता है। एक जीवन बनाना समाज को कोई छोटा योगदान नहीं। आगे जाकर यही बच्चा शायद हजारों की जिंदगी और संवार दे, अगर उसे पढ़ाई का अधिकार मिले।
0: मतलब एक बच्चे को पढ़ाना, ये तो कई लोग कर सकते हैं। वैसे कुछ ऐसे बच्चों को जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें मैं भी फ्री ट्यूशन तो पढ़ा ही सकती हूँ।
1: और उससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी।
0: कमाई?
1: हाँ, दुआओं की कमाई, क्योंकि जब पैसा काम नहीं आता मनो, तब दुआएं काम आती हैं। दुआएं कमानी भी बहुत जरूरी है।
0: ठीक कहा आपने। तो चलिए अब जल्दी से मुझे अगली कहानी सुना दीजिए, फिर मुझे कमाई भी तो करनी है दुआओं की ढेर सारी।
1: जरूर, चलो आज मैं तुम्हें वीर सावरकर की कहानी सुनाता हूँ। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले विनायक दामोदर सावरकर साधारणतया वीर सावरकर के नाम से ही विख्यात थे।
0: अच्छा।
1: वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ। उनके पिता दामोदर पंत गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे।
0: अच्छा।
1: जब विनायक 9 साल के थे, तभी उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया था।
0: ओ नो।
1: विनायक दामोदर सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी थे।
0: ओह।
1: उन्हें हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। उन्होंने जीवन भर हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान के लिए कार्य किया।
0: अच्छा।
1: वे अखिल भारत हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए।
0: ओह माय गॉड।
1: 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया गया। 1943 के बाद दादर मुंबई में रहे। वीर सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही पढ़ाकू थे वो। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी।
0: ओह, बचपन में ही कविताएं?
1: फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे।
0: ओह।
1: जब वे विलायत में कानून की शिक्षा हासिल कर रहे थे, तभी 1910 ईस्वी में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए। बाद में वे निर्दोष सिद्ध हुए और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 1940 ईस्वी में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आजादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई।
0: वो कौन सी?
1: जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए।
0: अच्छा।
1: जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई।
0: अरे वाह।
1: इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया।
0: अच्छा।
1: हाँ, जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई। परंतु इसके छपने की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे।
0: फिर क्या हुआ?
1: बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस तक पहुंच गई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया।
0: अच्छा।
1: मई 1909 में इन्होंने लंदन से वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं दी गई। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई।
0: अच्छा।
1: जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा द्वारा विलियम हॉट कर्जन वाइली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था।
0: अच्छा।
1: 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु 8 जुलाई 1910 को एसएस मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सेवरहोल के रास्ते से भाग निकले।
0: अच्छा।
1: 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया।
0: अच्छा, ऐसा भी हुआ था?
1: हाँ। इस तरह सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए दो बार आजन कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली और एक अनोखी सजा थी। सावरकर के अनुसार, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ, देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की।
0: क्या बात है, सावरकर जी की कहानी तो एकदम अनोखी लग रही है।
1: हाँ, सभी वीरों की गाथा ऐसी ही है, अनोखी।
0: लेकिन उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देना है, क्योंकि आपने ही कहा था ना कि देश के हित के लिए किया गया कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, इसलिए अपना योगदान जितना हो सके हमें जरूर देना है।
1: हाँ, बड़ी समझदार हो गई हो मनु।
0: आपसे ही तो सीखा है सब। लेकिन अब मेरी बारी है इसे इम्प्लीमेंट करने की। थ्योरी तो हो गई, लेकिन अब प्रैक्टिकल भी तो करना है।
1: मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।
0: अच्छा पुराना स्तंभ जी, अब मैं चलती हूँ। जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें पढ़ाने का कार्य जल्द से जल्द शुरू करना है। थैंक यू पुराना स्तंभ जी, बाय बाय।
1: बाय बाय मनु।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। खुशी का जो इंडेक्स है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि हर रोज हम कितना खुश रह पाते हैं, क्या हर पल खुश रह पाना संभव है। ऐसे बहुत से सवाल होंगे, बहुत से बिलीफ सिस्टम हमारे होंगे कि नहीं, हर पल की खुशी तो नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में खुशी है तो कभी गम भी होगा। और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि अगर हमें गम का पता ही नहीं चला तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में साथ साथ चलती जाती हैं, लेकिन अगर इस श्रृंखला को देखते हैं तो एक बात सामने आ रही है, खुशी मेरी किसी पर डिपेंड नहीं करती है, मैं खुद क्रिएट करता हूँ। अगर मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ तो वो क्रिएट कैसे करूंगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। एक पूरी साइकिल को हमने देखा है कि किस तरह से मेरा अपना भाग्य जो मुझे अभी तक मैं कह रही थी मिल रहा था वो मैंने ही दिया था और तब मुझे मिला। तो ये एक बहुत अच्छा, एक पावरफुल थॉट क्रिएट हुआ, खुशी का लेवल बढ़ा, खुशी का इंडेक्स अच्छा पहुंचा। अब एक बात और आ जाती है, डिपेंडेंसी मेरे अपने थॉट पर आई। अभी तक हम देख रहे थे कि खुशी जो है वो कहाँ कहाँ डिपेंड कर रही थी, तो खुशी मेरे डिपेंड कर रही है मेरे थॉट पर। इट मीन्स माई थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट।
0: तो अब इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को मैं किस तरह से देखूं?
1: एक बार जब हमें समझ में आ गया कि जो जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं सारा दिन, वो हमारी इस पूरी पर्सनालिटी को बनाता है एंड वही फिर हमारे भाग्य का भी निर्माण करता है, तो सारा फोकस अब शिफ्ट होकर मेरे ऊपर आ जाता है कि चाहे बाहर सिनारियो कुछ भी हो, फिर उस सिनारियो में भी अगर आई कैन क्रिएट पावरफुल थॉट्स, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिनारियो। घर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, रिश्तों में कुछ संस्कार स्वभाव का टकराव है, ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो भी मेरे पास चॉइस है कि अगर आई एम एबल टू क्रिएट द राइट थॉट्स एट दैट टाइम, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिचुएशन एंड नॉट ओनली क्रॉस द सिचुएशन, आई कैन चेंज द सिचुएशन। है ना, परिस्थिति मेरे संकल्पों से बदलती
0: थी। अल्टीमेटली मेरा मोटिव जो था वो सिचुएशन बदलने का था।
1: सिचुएशन को तो चेंज करना ही है ना। अगर मेरा रिश्तों के साथ, सपोज किसी के साथ कुछ टकराव चल रहा है, अब वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आई वॉन्ट टू चेंज द सिचुएशन ताकि वो जो रिश्ता है हमारा, इट बिकम्स अगेन स्मूथ, अगेन फ्लोइंग। लेकिन हम सोच रहे थे वो ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि पावर मेरे हाथ में है कि मैं ठीक करूंगी तो मेरे लिए तो एटलीस्ट पहले ठीक हो जाएगा, एंड फिर मेरे लिए ठीक हो जाएगा तो वो आगे भी ठीक होता जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेट करेंगे कि वो ठीक करेंगे तो ठीक होगा, तो इट इज जस्ट नॉट हेडिंग एनीवेयर। तो एक चीज जो हम अवेयरनेस के साथ अब जीवन को जीना शुरू करें कि ब्लेम करना बंद कर दें कि इनकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा, मेरे पास पावर है। तुरंत अपने आप को रुक कर एक मिनट देखिए, व्हाट इज द थॉट आई एम क्रिएटिंग, अभी अभी कुछ हो रहा है, स्टॉप लुकिंग आउटसाइड एंड वन मिनट जस्ट चेक व्हाट इज द थॉट आई एम क्रिएटिंग। जैसे आपने उस दिन भी कहा, बहुत मुश्किल है थॉट्स को देखना, हम नहीं देख पाते। मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमने देखा नहीं,
0: आदत नहीं है,
1: हमने देखा नहीं है। थॉट्स है क्या? थॉट्स है एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो यहाँ चल रही है। अब हम देखते नहीं तो वो बैकग्राउंड में चलती ही जाती, अब जैसे ही हम उसको देखना शुरू करते वो फोरग्राउंड में आ जाती है। आई विल बिकम अवेयर, फर्स्ट स्टेप है अवेयर होना के व्हाट आर द थॉट्स आई एम क्रिएटिंग। जब तक मैं अवेयर नहीं होंगी तो चेंज करना
0: पॉसिबल
1: इम्पॉसिबल है। अब थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, वी वॉन्ट टू चेंज द क्वालिटी। दुनिया में भी आज पॉजिटिव थिंकिंग, दिस हैज बिकम द थिंग, लाइक उसमें बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, सब कुछ है, हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि थॉट्स का सोर्स क्या है, व्हाट इज क्रिएटिंग द थॉट। थॉट तो एक एनर्जी है जो अंदर क्रिएट हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई रॉ मटेरियल तो अंदर जाएगा ना, जिसके बेसिस पर ये थॉट क्रिएट होता। तो थॉट्स के जो बेसिस है, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन। हम क्या इंफॉर्मेशन सारा दिन अंदर लेते हैं, वो दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू ऑल आर सेंस ऑर्गन्स। हम सारा दिन क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या भोजन खाते हैं, क्या अरोमा हम लेते हैं, क्या हम टच करते हैं। अब जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं, नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट इनटू द हैबिट कि सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ लिया एंड हमें लगता है ओ दिस इज अगेन नेचुरल में आ जाता है कि बेड से उठे नहीं कि उठते भी नहीं है, कई बार बेड में ही न्यूज़पेपर आ जाता है. तो फर्स्ट पेज पढ़ा, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ किसी पिता ने अपने बच्चों
0: के साथ. सुबह जो पढ़ा है वो सारा दिन रहता भी है, सारा दिन आपके साथ वो न्यूज कंटिन्यूस रहती है आपके साथ.
1: सिर्फ न्यूज तो रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जब आप सोकर उठे तो आपके माइंड को कितना रेस्ट मिला है. यू नो, आपका माइंड एकदम साइलेंट हो गया है. जब ये साइलेंट हो जाता तब इसकी अब्सॉर्प्शन पावर बहुत हाई है. अब इसमें आप जो भी डालेंगे वो बहुत इजिली अब्सॉर्ब हो जाएगा. तो द माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, यू नो, ब्लॉटिंग पेपर ऐसे चूस लेता है. तो साइकोलॉजिस्ट बताते कि सुबह के 2 घंटे करीब हमारी अब्सॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है. उसके बाद धीरे धीरे ये ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट होने लगता, तो बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएगा. साइलेंट माइंड, तो साइलेंट माइंड होते ही क्या हुआ, जो कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड है वो साइलेंट हो गया. आप सब कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड पर आ गए. अब जो भी आप अंदर डालेंगे वो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाएगा. और सबकॉन्शियस माइंड पर ही हमें वो डालना होता है जो हमें क्रिएट करना है सारा दिन के लिए. अब साइलेंट माइंड है, कॉन्शियस लेयर साइलेंट है, सबकॉन्शियस लेयर एक्टिवेटेड है, और उसमें आपने डाल दिया कि यहाँ अर्थक्वेक हुआ, यहाँ टेररिज्म है, यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, यहाँ मेट्रो का वो कुछ एक्सीडेंट हो गया. क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम सबकॉन्शियस के अंदर सुबह सुबह डाल रहे हैं. दे आर वर्ड्स ऑफ वायलेंस, फियर, हेट्रेड, इनसिक्योरिटी, ये डाल दिया. तो सुबह सुबह बीज कौन सा बोया? फिर हम कहते हैं सारा दिन क्यों फियर है, क्यों इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जैसे हल चलाकर मिट्टी को एकदम वो करके बीज कौन सा डाला था सुबह सुबह, फियर, वायलेंस, इनसिक्योरिटी. फिर सारा दिन आप चलो बाहर, आपकी लेयर फाउंडेशन कौन सी है, वही है. तो वो जो फाउंडेशन इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह भरी, उसी क्वालिटी की थॉट सारा दिन आप क्रिएट करेंगे. भले उस देश से आपका कोई लेना देना नहीं जिसके बारे में आपने सुबह पढ़ा, उन लोगों से नहीं है, लेकिन वर्ड्स कौन से डाले थे सुबह सुबह, इट इज नॉट इस देश में ऐसा हुआ, इट इज क्या हुआ, वो वर्ड आपके सबकॉन्शियस लेयर में फिट हो गया. अब वही वर्ड्स आपके थॉट्स को क्रिएट करते हैं, बिकॉज दैट्स द एनर्जी दैट आई गेट ड्यूरिंग द डे. अब आप कितना भी ट्राई करो पॉजिटिव सोचना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. आप शाम को घर पहुंचते हैं, कोई घर पर नहीं पहुंचा टाइम पे, आप फोन भी ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं फोन, नॉर्मल थॉट्स कौन से आने लगते हैं लोगों के अंदर,
0: एक्सीडेंट.
1: सी, आपने इतना इजीली बोल दिया, एक्सीडेंट हो गया. क्यों एक्सीडेंट हो गया? व्हाई डज दिस थॉट कम टू मी, अपने ही परिवार के सदस्य के लिए कि एक्सीडेंट हो गया होगा, क्योंकि सुबह सुबह मैंने क्या भरा था अपने अंदर. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. सिंपल प्रोसेस क्या करना है, मॉर्निंग उठते ही सबकॉन्शियस लेयर जब एक्टिवेटेड है, इसमें बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो भर दिया जाता है अंदर. तो जैसे वो पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स अंदर भरे जाएंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होगी, वो उसी क्वालिटी की क्रिएट होगी. तो एक है सुबह में कौन सी इन्फॉर्मेशन भरते, और एक है रात को सोने से पहले. ये दो टाइम बहुत क्रिटिकल है. अब मोस्टली आजकल हम रात को सोने से पहले क्या भरते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ अगेन मीडिया, एंड वो सुबह है न्यूज, शाम को है एंटरटेनमेंट. तो एंटरटेनमेंट के नाम पे भी इट इज ईदर फियर और पैनिक, या यू नो, संबंधों में मिसट्रस्ट, रोना धोना सीरियल के अंदर. अब ये सारी इंफॉर्मेशन भर दी, सो गए, रात को कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन फीड की गई थी. फिर जो रात को क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, सुबह उठेंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स
0: के साथ उठेंगे.
1: सो बेसिकली स्लोली इट बिकम्स अ विशेष.

0: और पढ़ो। कई लोग कहते ठीक है हम पेपर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जगह कुछ और तो आप पढ़ेंगे जिससे वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके अंदर भरता। इतना सा करने से यू विल सी कि आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। भोजन ही अंदर अगर नेगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से क्रिएट होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने सुबह सुबह ये डाला अपने अंदर कि जो होगा अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, परमात्मा परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, अब रात को मेरे घर कोई लेट है, कोई नहीं पहुंच रहा, आई वुडंट थिंक ऑफ एक्सीडेंट बिकॉज आई हैवंट फिटेड दैट इन्फॉर्मेशन इन द मॉर्निंग। आई विल से आ जाएंगे,
1: कम बैक, हाँ वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ
0: कुछ नहीं हुआ,
1: बैटरी खत्म हो गई होगी, यू नो लाइक सी सो मेनी।
0: वो थॉट्स है ना, वो आपके थॉट्स है। अब इसी में अगर आप देखो, अगर मैंने ये सोचा बैठकर एक्सीडेंट ना हो गया, उनको पता नहीं क्या हो गया, अगर उनको हो गया तो हमारा घर कैसा चलेगा, मेरा जीवन कैसे होगा, बच्चों को मैं कैसे, इतनी सारे थॉट्स क्रिएट कर दी, आधा घंटा एक घंटा इस क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, अब वो फाइनली तो पहुंच गए घर पे, हम कैसे ग्रीट करेंगे उनको, सारी वो जो फ्रस्ट्रेशन हमने बिल्ड कर दी अंदर वो सारी बाहर निकल आएगी। सामने वाला व्यक्ति भी कुछ किसी सीन से गुजरा है तब वो लेट है, तो तुरंत उस टाइम हम दोनों के बीच क्या होगा, एक झगड़ा होगा। दिस इज माई डेस्टिनी फॉर द इवनिंग। ये डेस्टिनी किसने क्रिएट की, हम कहते उन्होंने की क्योंकि वो लेट थे, लेकिन नहीं, मैंने किस तरह की थॉट्स क्रिएट की जब मैं उनके लिए वेट कर रही थी। इफ आई वुड हैव रिमेन्ड स्टेबल एंड सेड आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में फोन तो आ ही जाएगा, पता चल जाएगा, फोन नहीं कैच कर रहा होगा, तो जब सामने वो व्यक्ति पहुंचेगा, हाउ विल आई मीट द पर्सन, एब्सोल्युटली ओके, सो देयर विल बी नो फाइट, टू डिफरेंट डेस्टिनीज, तो वी आर क्रिएटिंग इट एट एवरी स्टेप। सो वन सोर्स इज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। तो इसके लिए अगर हम सब अपने पास कोई ऐसा लिटरेचर रखे, जैसे एट द ब्रह्म कुमारीज हम परमात्मा के महावाक्य सुनते, एवरीवन कैन चूज के वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सुबह 15 मिनट और रात को जस्ट सोते समय, आज रात को सोते समय या तो हम टीवी देखते, और अगर पढ़ते हैं तो वी आर रीडिंग अगेन फिक्शन या समथिंग वेरी वेरी स्टिम्युलेटिंग, तो माइंड को उतना स्टिम्युलेट करके फिर हम सो जाते हैं। तो शरीर तो सो गया लेकिन मन अभी भी बहुत एक्टिव चलता, फिर जब सुबह उठते तो स्थिति कैसे होती है, इट जस्ट डजंट फील के यू आर एनर्जाइज्ड।
1: रात को जब सो रहे होते हैं, जब सोते हैं तो लाइक काफी साइंटिस्ट से भी बात की, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है।
0: हाँ, क्योंकि कॉन्शियस माइंड स्लीप कर जाता है। अभी यही अगर आप किसी बात से परेशान हो, आपके कॉन्शियस माइंड में कोई थॉट्स चल रही है, तो आपको नींद नहीं आती ना, आप कहेंगे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं सो पा रहा। सो कौन नहीं पाता, जिसका कॉन्शियस माइंड साइलेंट ही नहीं होता, वो दिन की चीजों को, सारा दिन जो, या उसकी कोई परेशानी है वो उसके ऊपर होवर कर रहा, तो वो स्पीड ऑफ थॉट बहुत फास्ट है, तो वो कॉन्शियस माइंड को साइलेंट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर उनको नींद नहीं आती, तब वो कोई ऐसा मेजर लेंगे, चाहे कि वो स्लीपिंग पिल है या कोई भी और तरीका, जिससे वो कॉन्शियस माइंड को दबा दे और उनको नींद आ जाए। तो अगर हम वो सब करने की बजाय सिर्फ कुछ अच्छा पढ़ें बैठकर, हमारे थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाए। यू नो, कोई बात मुझे परेशान कर रही है तो वो नेगेटिव बहुत सारी है, आई कांट स्लीप, डू नथिंग, जस्ट पिक अप समथिंग वेरी वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव एंड उसको पढ़ना शुरू करें, आपके थॉट्स धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी, आपका माइंड स्लो डाउन होता जाएगा, और यही आप सारा दिन भी कर सकते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि सारा दिन में चलते चलते क्यों ऐसी, यू नो, ऐसी वाली थॉट्स आ रही है, नेगेटिव आ रही है, अगर आपके पास उस समय ऐसा कोई लिटरेचर है, जस्ट ओपन इट, क्योंकि कई बार हम खुद पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर पाते, यू नो, कोई बात एकदम मेरे चलती जा रही है, आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ इट, जस्ट ओपन एंड स्टार्ट रीडिंग।
1: कई बार क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं वो सारा, क्योंकि वो थॉट इतना पावरफुल होता है कि वो पूरा का पूरा पेज पढ़ जाएंगे और हमें कुछ याद।
0: रीड इट लाउडली, रीड इट लाउडली, इट वर्क्स। सी, हमें अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए। हम सोचते हैं नेगेटिव चल रहा है, चलने दो, पढ़ा मैंने नहीं समझ, रीड इट लाउडली, जैसे किसी और को पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि जब आप जोर से पढ़ के सुनाते हैं आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन उसमें चली जाती है। कभी कभी जब हम ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं तो माइंड फिर भी कुछ और सोच, रीड इट लाउडली, इट हैज टू चेंज, होगा ही, नहीं चले उसी तरह दर्द के अंदर। जब धीरे धीरे इस तरह से अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तब थॉट्स क्यों नहीं चेंज होंगे, इट हैज टू चेंज। एंड द अदर थिंग व्हिच has a deep impact is past experiences. कि पिछली बार जब

0: मैं आपसे मिली थी
1: तो मेरे को कैसा अनुभव हुआ था?
0: तो वो मेरे, जैसे ही मैं आपको इस बार मिलती हूँ फिर से, वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे ऊपर फिर से वो सारा कसेट जैसे रिवाइंड हो जाता है और उसी क्वालिटी की थॉट्स फिर से चलनी शुरू हो जाती है. तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, लेट मी सिट एट द एंड ऑफ द डे एंड क्लीन इट आउट. क्लीन इट आउट, उस सिचुएशन को समझू, मैं अपने आप को समझाऊं, ताकि मैं यहां से वो जो फाइल बिल्ड होती जा रही है वो एक्सपीरियंस की, वो नेक्स्ट सिनारियो में मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. क्योंकि बहुत बार हम पास्ट एक्सपीरियंस पे ब्लेम डाल देते हैं, क्या करूं मेरे साथ पहले इतनी बार ऐसा ही हुआ था तो मुझे डर तो लगेगा ही ना, पिछली बार भी ऐसा ही इन्होंने किया था तो मुझे इस बार डर तो लगे. तो इफ आई कीप सेइंग दैट, तो हर बार जब मेरे पास वो सीन आएगा तो मैं अपने आप को क्या करूंगी, एक विक्टिम जैसी फील करूंगी.
1: और फिर मैं, और फिर वो होने भी लग जाएगा.
0: बिकॉज आई क्रिएट दैट थॉट अगेन.
1: नहीं, एक और बात है कि सपोज आपने नहीं किया हो, लेकिन वो सिचुएशन जब आई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था. तो वो सिचुएशन आपके सामने, कोई भी वो सिचुएशन फिर से आती है तो अच्छा, मुझे ये फियर रहता है कि वो फिर वैसा ही हो रहा है.
0: सो आई, बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, लाइक जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम मिली, आपने मेरे से ठीक से नहीं बात की. अब ये बात मैंने पकड़ ली अपने अंदर और मैं सोच रही हूँ इन्होंने नहीं बात की. अब अगर नेक्स्ट टाइम मैं कल आपसे मिलने वाली हूँ फिर से, आई नीड टू पहले बैठ कर वो पास्ट वाली इन्फॉर्मेशन को मैं अपने साथ बात करके, डिस्कस करके अपने साथ वो क्लीन आउट करूँ कि हाँ भले नहीं बात की, बट इसको मैं अपनी सोच पर हावी दे होने वाली नहीं हूँ.
1: तो फिर मैं क्या करूँ? मैं उनको मतलब एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूँ?
0: वन इज गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट, सेकेंड इज येस द अदर पर्सन कैन बी अपसेट, थर्ड इज इररिस्पेक्टिव मैं फिर भी ठीक से बात कर सकती हूँ. क्योंकि अदरवाइज मेरा रिश्ता आपसे बिगड़ता ही जाएगा, क्योंकि वो मैं पास्ट एक्सपीरियंस को नेक्स्ट सीन पर
1: हावी
0: होने दूंगी. अब क्या होगा, कल शायद आपका मूड ठीक नहीं था, लेकिन हो सकता है आज आप ठीक हो बिल्कुल, लेकिन आज मैंने वो पास्ट एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड किया. तो वो मैं पास्ट एक्सपीरियंस लेकर जब आपके सामने आती हूँ तो मैं आपको उसी के थ्रू देखती हूँ, एंड फिर आप ठीक भी हैं तो मुझे ठीक नहीं लगते, क्योंकि मैंने आपके बारे में क्या बना लिया कि नहीं ये तो ऐसे ही है. तो इसलिए हम एक बहुत सुंदर चीज जो यहाँ पर करते, एंड दैट इज हर रोज रात को थोड़ी देर बैठे अपने साथ, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन, कि हर रोज रात को 5 मिनट्स 10 मिनट्स बैठ कर अपने दिन का चार्ट, जैसे लोग लेटर नहीं लिखते, अपनी डायरी नहीं लिखते, तो डायरी में क्या करते, सिचुएशंस को सिर्फ लिख देते हैं, आज ऐसा हुआ, आज मेरे, देयर इज नो लर्निंग इन दैट, वो तो सिर्फ आपने एक रिकॉर्ड अपना बना दिया. लेकिन अगर आप अपने दिन को रिवाइंड करके उसमें जो आपने हर्ट क्रिएट किया किसी के प्रति, हेट्रेड क्रिएट किया किसी, वो जो आपने यहाँ अक्यूमुलेट कर लिया, अगर आप उसको लेट गो कर सकते हो, डिलीट
1: कैसे लेट गो कर सकते हैं, उन सिचुएशंस को दोबारा देखें,
0: उन सिचुएशंस को भले देखो बट डोंट गो थ्रू दैट पेन अगेन. उन सिचुएशंस को देखो और फिर अपने आप को देखो कि अगर मैं अपनी थॉट को थोड़ा सा चेंज कर लूं इस टाइम, आई विल बी एबल टू हैंडल दिस रिलेशनशिप, आई कैन नॉट गो ऑन लिविंग इन दिस पेन अगेन एंड अगेन. क्योंकि मैं आज अगर नहीं क्लियर करती इस हार्ड डिस्क को, तो फिर ये जो सारा अक्यूमुलेट हो गया ये मेरे नेक्स्ट डे पर carry forward होता है. This is what we call cleaning the hard disk every, जो scan disk करते हैं ना, तो हर रोज अपना ये scan करें कि yes उन्होंने जो किया so किया, but am I going to carry forward this hurt? ये तभी हम कर पाएंगे जब हम realize करेंगे कि irrespective दूसरे का व्यवहार कैसा भी है, मेरी सोच फिर भी मेरी क्रिया. और इसको प्रैक्टिस करो, अब यू ब्रिंग अप दैट सीन, हो सकता है आज सुबह मुझे गुस्सा आया था किसी के साथ वर्क करते हुए, मैं रात को उस सीन को लाती हूँ अपने सामने, नए से डिड आई हैव एनी अदर चॉइस, कुड आई हैव हैंडल्ड दैट सीन इन एनी अदर वे, या गुस्सा करना ही ना. अगर मैं नहीं
1: देख, ऑप्शन आ गई कि मैं कर सकती थी तो मैं गिल्ट में चली
0: जाऊंगी. नो, गिल्ट में नहीं जाऊंगी, आई विल टेक दैट ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट टाइम. दैट इज वॉट इज द राइट वे ऑफ वर्किंग विद योर सेल्फ. जब हम उस सीन को फिर से देखते हैं कि गुस्से से किया, दूसरा वाला तरीका भी तो था, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रही हूँ. जितना हम अपने साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. अगर हम नहीं देखते हैं तो वो ही पास्ट एक्सपीरियंस, कल इन्होंने तो कल भी काम गलत किया था, इन्होंने तो आज भी गलत किया, मैंने कल भी गुस्सा किया था, मैं आज भी गुस्सा कर
1: रही हूँ, अब तो आज गुस्सा आ रहा तो और जायज हो जाएगा,
0: तो वो फिर एंड देन दैट इज हाउ इट क्रिएट्स माय संस्कार. मेरा बहुत डीप जो हमने कहा, थॉट से फीलिंग से एक्शन फिर हैबिट. हैबिट क्यों बन रही है? क्योंकि कहीं भी रुक कर थॉट को चेंज नहीं किया. तो अगर ये मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम हम अपने साथ स्पेंड करें, पुट इट इन योर डायरी, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, लॉट ऑफ वर्क गेट्स डन, लॉट ऑफ वर्क. अदरवाइज तो आप अपने ऑर्डिनरी तरीके से चलते जा रहे हैं, और उन सीन्स को लेकर अपने रिस्पॉन्सेस को देखना है, सिचुएशन को नहीं देखना है. हम क्या करते हैं, अगर रिवाइंड भी करते हैं आज की दिनचर्या को, तो हम सिचुएशन को देखते और दूसरे लोगों को देखते, वो नहीं है मेरे कंट्रोल में, मुझे सिर्फ ये देखना है मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया. यहाँ पर मैं हर्ट हुई, यहाँ पर मैं गुस्सा कर दिया, या वॉट एल्स कुड आई हैव डन, दैट इज द प्रोग्रामिंग,
1: ताकि मैं मेरी स्टेबिलिटी रहती.
0: तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सिचुएशन के बारे में नहीं चिंतन करना, औरों ने क्या बोला था या क्या किया था उसके बारे में नहीं चिंतन करना, मैंने क्या रिस्पॉन्स किया था और मैं क्या रिस्पॉन्स कर सकती हूँ आगे. देन आई विल गो टू स्लीप धीरे धीरे क्लीनिंग दैट. अदरवाइज गो टू स्लीप विद द हर्ट, गेट अप नेक्स्ट मॉर्निंग विद दैट हर्ट, एंड देन व्हेन यू मीट दैट पर्सन अगेन री इन्फोर्स दैट हर्ट. इट नेवर जस्ट गेट्स क्लीन्ड ऑफ लाइक दैट.
1: वंडरफुल. जो थॉट क्रिएट करने के जो प्रोसेस को हमने समझा, तो उसमें तीन चीजें जो है आपने कहा, इन्फॉर्मेशन और मेरा पास एक्सपीरियंस, एंड
0: वन मोर वी हैव टू सी इज
1: बिलीफ सिस्टम्स, कि कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जो मेरे थॉट्स को क्रिएट करते हैं. तो दो को तो हमने खूब अच्छी तरह से समझा है, और आपने जो सॉल्यूशंस दिए हैं, सी समझ के जब तक कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया, चाहे कितनी भी जैसे आपने कहा किताबें हैं या कुछ भी है, हर कोई बात कर रहा है थॉट पावर की. और आपने जो हमें सॉल्यूशन दिया है वो ये कि अगर सिचुएशन आती है जो कुछ भी है, हम समय समय पर राइट काइंड ऑफ लिटरेचर को अगर पढ़ें,
0: एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट डेफिनेटली,
1: हाँ उसमें कुछ पढ़ें जरूर, पहली चीज जो हम करें,
0: कुछ पढ़ें, कुछ सुने, मतलब एनीथिंग दैट आई
1: सेंसरी ऑर्गन से पॉजिटिव कर सकते,
0: क्योंकि नहीं तो वी आर फ्लडेड विद नेगेटिव,
1: और वो हमें तो मांगना भी नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी मिल रही होती है. ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पे भी मिलते हैं, वो जानकारी वैसे.
0: सिंपल एग्जाम्पल इज दिस टेलीविजन प्रोग्राम. बहुत सारे भाई बहने अपना फीडबैक भेजते हैं कि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये किया है कि हर रोज वो रेगुलरली ये प्रोग्राम देख रहे हैं. कुछ नहीं करना ना, बस उतना टाइम अपने लिए टाइम निकाला है, दैट एफर्ट इज बीइंग मेड. तो अपने लिए वो आधा घंटा डेडिकेट किया कि हमें ये प्रोग्राम देखना है. नाउ थॉट, उसी टाइम पर और भी तो प्रोग्राम्स हैं, आपके टेलीविजन पर 100 चैनल्स आ रहे हैं, लेकिन समवन इज चूजिंग टू वॉच दिस प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी और व्हाटएवर. तो वो इस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन अंदर ले रहे हैं. मेजोरिटी लोग जो मिलते हैं, अगर उनसे खुद ही बोलते हैं कि एक चीज जो हुई है ये प्रोग्राम देख के, इमिजिएटली कहते हैं मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है. दे डोंट इवन रियलाइज व्हाट समटाइम Everyone's common thing is मेरा thought process change हो गया,
1: सोचने का तरीका बदला है, बदल
0: गया. किसलिए? रोज रोज रोज रोज जब सुना अपने बारे में वो सुना, it has to have an impact, has to. So this is practical proof कि कैसे बदलती है
1: information जो है. तो फिर इस प्रोग्राम के साथ तो जुड़े रहना ही है आपको, कि हर रोज जो आधा घंटा प्रोग्राम जो भी वक्त मिल रहा है वो जरूर देखना, और मॉर्निंग में भी जरूर कोशिश करें कि कुछ पढ़ें, कोई ऐसी जानकारी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने में आपको स्ट्रेंथ देगी, वो बहुत जरूरी है. और दूसरा जो कहा कि मेरा बिलीफ, मेरी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, तो दिन भर के पास्ट हर्ट को, सारी नेगेटिविटी को अगर हम डिलीट कर पाए दिन भर में, आई थिंक समवेयर दैट इज गोइंग टू हेल्प. और वो मेरी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको भी काफी बेटर कर देगा. अगर मैं रोती हुई सोऊंगी तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी. तो आपके मन में अगर कोई सवाल उठता है या कोई बात है, जो सजेशन है जो आप इस सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है बताना चाहेंगे, आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. शिवानी बहन, जिस तरह से रोज इस पूरी श्रृंखला में हमें बातें समझ में आ रही हैं, जरूरी ये भी दिखता जा रहा है कि उस पर रिफ्लेक्ट करना जरूरी है. थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर अगर वो थॉट क्रिएट करें जो आज हमने समझे हैं,
0: आई थिंक हम 2 मिनट रिफ्लेक्ट करके लेट गो करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को या उन परिस्थितियों को जो आज दिन तक हम समझते थे कि मेरे ऊपर बहुत सारी हावी हो रही है. सो जस्ट टेक एनी वन, बहुत ज्यादा सबको इकट्ठे नहीं लेते, लेट्स टेक एनी वन एंड लेट्स लेट देम गो फ्रॉम हियर. कंफर्टेबल होकर बैठे, परिस्थितियों से और लोगों से अपने आप को हटाते हुए अपने मन को देखते हैं. क्या सोच सारा दिन मेरी चलती है, एवरी थॉट दैट आई क्रिएट. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये मेरी क्रिएशन है. आज दिन तक जो दर्द, जो धोखा, जो तकलीफ मैंने पकड़ कर रखी थी, वो मैंने पकड़ कर रखे थे. आई चूज टू होल्ड ऑन टू इट. आई चूज टू लिव इन पेन. आज मैं अपने आप को उस दर्द से लिबरेट करती हूं बाय क्रिएटिंग द थॉट आई एम अ पीसफुल बींग. नो वन एल्स हैज द पावर to hurt me. Peace is my nature. Shanti meri shakti hai. Ye meri creation hai. Om Shanti.
1: Om Shanti. I'm a peaceful being. In fact, it's amazing, you know, how just one thought and sitting in silence can help you so much. Let go is so simple. Again, ball is in your court. कितने को पकड़ के रखना है और किसको छोड़ देना है, कितना आसान है. एक क्षण में हम छोड़ सकते हैं उस सारे दर्द को. अब इतनी विद ब्रह्मा कुमारी, इसका ये सफर आगे भी चलता रहेगा. थैंक यू सो मच.
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया. मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पूरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको कुछ बता रही है कि जैसे कुछ मिल गया हो हमें। जी हाँ, हम एक सफर पर हैं, एक तलाश में थे खुद को पहचानने की, और अब ऐसा लगता है कि इस सफर में शायद कुछ कुछ जानने की कोशिश हो रही है। अवेयरनेस क्रिएट करना कि कौन हूं मैं, हु एम आई, आई द सोल, यहां तक तो हम पहुंचे। इसके आगे का सफर और जारी रखते हैं, और इस सफर में हमारी हम सफर ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, फटाफट एक रिकैप करते हैं और मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि अभी तक मैंने क्या समझा जो ये सफर तय कर रहे हैं। हु एम आई, सबसे बड़ी बात जो हमने बात की थी कि क्या जरूरत है खुद को पहचानने की। तो इतने सारे रोल अदा करते करते बहन का, माँ का, बेटी का, ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। आई द सोल, वो सुप्रीम, मैं वो सोल हूँ, वो आत्मा हूँ जो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। आपने इतना खूबसूरत हमें एहसास करा दिया है। उसके बाद था कि उस अवेयरनेस को कैसे क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक थॉट जो था वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा था, एक इंटरनल प्रोसेस था जो कि बहुत लॉजिकल था, तो काफी क्लियर होती गई वो बातें। उसके बाद हम आए कि जो पूरा ये प्रोसेस है इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या आती हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, तो सामने आई ईगो। और ईगो के लिए मुझे लगता है हमारे दर्शकों को अगर याद हो, मुझे अभी तक याद है कि वो जो ईगो थी, वो मेरा अहम, जिसे मैं कहती हूँ कि अपने आप को मैं सुप्रीम दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, वो जनरेट हो रहा था अंदर कहीं फियर या भय से, क्योंकि अटैचमेंट थी। अब इसके आगे का सफर है, या इसको थोड़ा सा कुछ और आप कहना चाहेंगे?
1: नहीं, वो ईगो बने का, ईगो जैसे थी, इट वॉज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज। अपने मन में कोई एक रॉन्ग इमेज, एक रॉन्ग बिलीफ अपने बारे में लेकर उस चीज से इतना जुड़ जाना कि इन द प्रोसेस अपने व्यक्तित्व को ही भूल जाना कि मैं एक्चुअल कौन हूँ। और जहाँ अटैचमेंट थी वहां एक रिजेंटमेंट है कि कहीं ये छूट ना जाए, वो डर एक बना रहता था। और ये फिर हम अपने व्यवहार में हमने देखना शुरू किया कि कौन से हमारे ऐसे बिहेवियर हैं जिसमें ईगो झलकता है, दिखाई देता है कि मेरा ईगो सामने आ रहा है। एंड वी लुक्ड अप अ नंबर ऑफ बिहेवियर्स उसमें, जैसे आर्ग्यूइंग, जिद करना, यू नो, बॉसिंग, दूसरों के ऊपर रोब जमाना,
0: एंगर,
1: एंगर
0: वाज अ मेजर एस्पेक्ट। और ये एहसास कि मैं सुप्रीम हूँ,
1: right.
0: ये देना,
1: राइट right.
0: ये एहसास तो अंदर से नहीं है, ये हाँ, मुझे अब समझ में आ रहा है कि, हाँ, क्योंकि मुझे डर है
1: right.
0: कि कहीं मैं नहीं हूँ,
1: तो उसको एहसास प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
0: एक क्रिटिसिज्म जो है वो भी एक हमने right. माना था,
1: हाँ.
0: और कुछ इंटरनल चीजें थी,
1: राइट right.
0: हर्ट होना,
1: hurt,
0: रोना,
1: क्राइंग, सल्किंग, दूर होके विद्रॉ करके बैठ जाना, यू नो, पेन जो अंदर चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट से, वो फियर से जुड़ा हुआ था।
0: जैसे शिवानी, इन पे एक एक करके मैं हम आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे पास जो ईमेल्स आए हैं उनमें हाँ. एक ऐसा ही क्रिटिसिज्म पे एक मेल है हमारे
1: अच्छा.
0: पास जो कोलकाता से आया है, मिसेस बैनर्जी का। एंड व्हाट शी सेज इज कि वो उनके 25 साल हो गए हैं शादी को, शादी के पहले दिन से ही उनकी मदर इन लॉ जो हैं उनसे नाराज रहती हैं, हर कदम पे, हर बात पे उन्हें क्रिटिसाइज करती रहती हैं। और 25 साल, एक्चुअली 25 इयर्स, लॉन्ग टाइम, तो उसके बावजूद भी वो क्रिटिसिज्म खत्म नहीं हुआ है। मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि उनके क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार मुझे बुरा लगता है और मुझसे मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगता है। तो मैं क्या रास्ता अपना सकती हूँ? एक्चुअली 25 साल तो मतलब कंटिन्यूस,
1: लेकिन एक संस्कार बना हुआ ना, तो वो संस्कार कहीं चेंज नहीं हो रहा है उनका। तो जो सुन रहा है उसे ही कहीं ना कहीं अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें हम दो स्टेप में ले सकते हैं कि जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका ईगो क्या है, और जो हर्ट फील कर रहा है उसका ईगो का, क्योंकि ईगो तो दोनों का ही वर्क।
0: यहाँ एक बात, क्योंकि जो हर्ट हाँ, फील कर रही है, जो हाँ, हमने हर्ट की बात की थी हाँ, कि केमिकल रिएक्शन होता है कि हमें हैबिट पड़ जाती हाँ, है कि अच्छा मैं हर्ट होंगी या एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई वो मुझे हर्ट करेंगे,
1: राइट हाँ,
0: तो ये कैसे हम जर्नी,
1: क्योंकि क्रिटिसाइज हम सब लोग बहुत करते हैं है ना, हम सबको आदत है कि किसी न किसी को छोटी छोटी बातों के लिए क्रिटिसाइज करें। तो जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं कहाँ हम चेक करें, क्योंकि क्रिटिसाइजिंग ये एक बिहेवियर है, ये हमारा व्यवहार है दूसरों की निंदा करना। अब इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं क्योंकि ये बाहर हो गया, अब हमें इसका इंटरनल प्रोसेस देखना पड़ेगा। हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, आपको एक आइडिया आता है और तुरंत आपके आइडिया को सुनते मैं उसको क्रिटिसाइज कर देती हूँ या उसको रोकने की या सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मैंने आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, अब मुझे अपनी पहले चेकिंग करनी है कि जब मैंने आपकी आइडिया को क्रिटिसाइज किया, मेरा फियर क्या,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा फियर है.
1: हाँ, क्या फियर होगा, क्योंकि कोई फियर है, मुझे उसको अपने आप के लिए एनालाइज करना पड़ेगा कि जब मैं दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, बिकॉज नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अपने बिहेवियर को देखना, उसके पीछे के भय को पहचानना, किस चीज से मेरा अटैचमेंट है वो पहचानना, लेट गो.
0: हाँ, उस अटैचमेंट को छोड़ना,
1: क्योंकि जैसे ही वो अटैचमेंट को छोड़ेंगे वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा और मेरा ईगो धीरे धीरे धीरे, इट्स अ स्टेप, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन, इट्स अ प्रोसेस. देखो, सेल्फ अवेयरनेस यही है. अभी मुझे अवेयरनेस है कि ये एक प्रोसेस है जो अंदर चलता है. नाउ एवरी टाइम आई सी दैट बिहेवियर आई शुड गो टक टक टक स्टेप, व्हाट हैपेंड, बिहेवियर, फियर, अटैचमेंट, लेट गो. यू नो,
0: वेरी गुड, लाइक, एंड इट इज पॉसिबल,
1: इट्स पॉसिबल. सो लेट सी कि अगर आपने एक आइडिया दिया और तुरंत मैंने उस आइडिया को क्रिटिसाइज कर दिया तो मेरा क्या फियर हो सकता है इसमें,
0: कि मैं आपको ओवरपावर कर
1: जाऊं. एब्सोल्युटली सिंपल, क्योंकि मेरे पास भी कोई आइडिया था और मुझे अब ये भय है कहीं आपका आइडिया एक्सेप्ट ना हो जाए, कहीं आपका आइडिया ऑर्गेनाइजेशन को या परिवार को या जो भी आपका आइडिया ना पसंद आ जाए. दैट इज माई फियर. और ये फियर है, अटैचमेंट मेरी किस चीज से है, अपने आइडिया से.
0: ओके, आइडिया से,
1: बिकॉज वो मैंने भी तो एक आइडिया क्रिएट करके रखा था ना, और अब मुझे ये फियर है कि कहीं आपका आइडिया नहीं एक्सेप्ट हो जाए. और अटैचमेंट मेरी है अपने आइडिया से कि मेरा आइडिया वॉज
0: द बेस्ट.
1: I had come up with that idea. I have been thinking over it for so long. इतना उसमें एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया, और वो अच्छी बात है एनर्जी इन्वेस्ट करना, लेकिन करते करते करते उस आइडिया से अटैचमेंट हो गया. ये ही मैं हूँ, ये अगर एक्सेप्ट होगा मुझे खुशी होगी.
0: लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में मेरा आइडिया जो है वो सही है, इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो सही रिजल्ट देगा,
1: इट्स फाइन. तो ये भी नहीं है कि हम अपने आइडिया को रिजेक्ट कर दें और दूसरे के आइडिया को ही एक्सेप्ट कर ले. दिस इज वेयर इट विल कम द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ये बिल्कुल डिफरेंस आएगा. अभी फर्स्ट स्टेप क्या थी, क्रिटिसिज्म की. क्रिटिसाइज तब करूंगी जब भय है. अगर मुझे श्योर है,
0: अच्छा हाँ, जहां मुझे ये अश्योरिटी है,
1: सी इट्स ऑल दैट वे, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. जहां मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यू नो इट्स नॉट एरोगेंस, सी एवरीवेयर देयर इज अ टू
0: लाइन,
1: सेल्फ कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, स्वाभिमान, अभिमान. ये बहुत थिन लाइन है, हमें पता ही नहीं चलता, हम हॉप स्किप एंड जंप दोनों के बीच में करते रहते हैं. जहां हर्ट है, जहां दर्द है, जहां पेन है, इट्स ईगो. जहां स्टेबिलिटी है, यू नो, ये किसी और से डिस्कस करने की भी चीज नहीं, ये अपने आप अंदर पता चल जाता. जहां स्टेबिलिटी है, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट. एकदम स्थिति स्थिर है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं अपने स्वमान में हूं, स्वाभिमान में हूं. जहां कुछ नहीं कहते, उन्होंने मेरे ईगो को ठेस पहुंचाई,
0: मेरे अहम को
1: ठेस पहुंचाई. ठेस पहुंचाई मतलब यू हर्ट मी, ठीक है. तो यू हर्ट मी, that means I was not in my self respect. You could come and you could
0: take over.
1: That was lack of self confidence. To criticize hum tab karte hain jab hame bhay hota hai ki inka idea zyada logon ko pasand aa jayega. Aur attachment mere idea se thi ki my idea was very good. Maine apne astitva ko us idea ke andar hi jaise kho diya tha ki yahi mujhe khushi dega. Now what do I have to let go?
0: Attachment.
1: Ki ye idea acha tha. हो सकता है ये आइडिया भी बहुत अच्छा है. इट्स फाइन, इट्स जस्ट एन आइडिया. ये सिर्फ एक आइडिया है, ये मैं नहीं हूं. ये इसको अगर कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा ही अस्तित्व ऊपर नीचे हो जाए. मैं अलग, ये आइडिया अलग. जैसे ये गाड़ी अलग, मैं अलग, ये शरीर अलग, मैं अलग, ये व्यक्ति अलग, मैं. अपने आप को उससे डिटैच करते जाओ. तो ये अटैचमेंट थी, इसको लेट गो करे. अब दूसरी तरफ जो बैठा है, जिसको हमने क्रिटिसाइज किया, वो कहाँ हर्ट होगा, तो वो भी एक ईगो है. अब सपोज आपके आइडिया को मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे आपने कहा कि आपको अगर पता है कि आपका आइडिया
0: बेस्ट
1: है या ठीक है, बिल्कुल, अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट में है, हम दोनों चीजों को लेंगे, अगर आप स्वाभिमान में है, अपने स्वमान में है, आप ओपन है, आप अपने आइडिया से अटैच्ड नहीं है. जहां आप अपने आइडिया से अटैच्ड होंगे, पहली बात आप मेरे आइडिया को ठीक से देख नहीं पाएंगे. क्योंकि आप अटैच्ड हैं इस थॉट से कि मैं आपका आइडिया बेस्ट है. यू नो, जब आप अटैच्ड हो जाएंगे इस थॉट से कि मेरा आइडिया बेस्ट है आपका, तो आप दूसरे के आइडिया को एक ओपन माइंड से देख भी नहीं पाएंगे.
0: इसका मतलब जो आइडिया मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट है इस सिचुएशन में, उसके साथ भी मुझे अटैच नहीं होना है, इवन इफ आई नो दैट दिस इज माय बेस्ट राइट.
1: सी अगेन, दिस आइडिया इज योर बेस्ट, ये आपका बेस्ट आइडिया है, बट nowhere is it written के you know that means के कोई और एक अच्छा idea नहीं ला सकेगा. तो I can say that I have given my best. ये मेरा best था, मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई कुछ नहीं कर सकता.
0: जिस दिन मैं ये सोच रही हूँ कि this is the best, तो मैं close हो गई.
1: Yes, that is ego. This is my best. This is my potential. This is self-respect. ना, अब फर्क क्या आएगा कि यू विल एक्सेप्ट कि मेरी अभी इस समय वर्तमान समय इतनी कैपेसिटी है, दिस इज माय बेस्ट एंड आई हैव गिवन माय बेस्ट एंड यू आर कंटेंटेड, आप संतुष्ट हैं कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया. अब दूसरे ने आकर कोई और सुझाव दिया या आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, अगर आप स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी में हैं, आप अपने अंदर अपने आप से बात करेंगे कि मेरा आइडिया ये भी ठीक था, हो सकता है इनका आइडिया भी ठीक हो. इट्स एन ओपन माइंड. Now leave it कि किसका, whether it's a dialogue between you and me or whether somebody else is evaluating कि किसका आइडिया ज्यादा अच्छा था. लेकिन जहां आपने सोच लिया कि मेरा आइडिया ही सबसे बेस्ट था, तो आपने दूसरे के आइडिया को तो स्वीकार ही नहीं किया, आप अपने आइडिया को पकड़ कर बैठ गए और आपका मेरे प्रति जो दृष्टिकोण होगा वो ये होगा, अच्छा ये मेरे आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपना इन्होंने सोचा है, आज तक इन्होंने कुछ किया है, मैंने क्या. तो एक नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी. तो जहां खुद को नहीं रिस्पेक्ट किया, वहां दूसरे को भी नहीं रिस्पेक्ट कर सकते. नाउ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट मी ऑल्सो, बिकॉज सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आपको फियर है, पता नहीं रियली मेरा आइडिया अच्छा है. इंटरनली बाहर ही बोलेंगे कि सच में अच्छा है या हो सकता है इनका ज्यादा अच्छा है. ओपन माइंडेड नहीं है. और सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, मेरा अच्छा है, हो सकता है आपका भी अच्छा हो, लेट्स डिस्कस. हो सकता है इस बार एक्सेप्ट आपका किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरा गलत था. यू नो, इट्स बहुत हानिकारक होता है जहां हम, अगर एक बार हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम सोचने लगे अच्छा इसका मतलब तो मेरा बेकार है, दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग. ये लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है दोनों, दैट्स व्हाट वी सेड. यहां स्टेबल है, इधर चले जाना कि नहीं मेरा ही बेस्ट है, ये भी ईगो हो गया. और ये सोचना अच्छा तो मेरा तो कोई काम का ही नहीं है, दूसरों का ही आइडिया हमेशा अच्छा होता है. अपने आइडिया की रिस्पेक्ट करना, अपने आइडिया पर विश्वास होना, अपने आप पर विश्वास होना, ये अच्छा है. लेकिन हो सकता है वर्तमान समय इसका अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खराब है. सी, अपने आप को डैमेज नहीं करना, दूसरे को भी डैमेज नहीं करना.
0: लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, इससे मैं अपने आप को डिटैच कर सकती हूँ अपने आइडिया से भी, इवन इफ मैं जानती हूँ कि वो आइडिया अच्छा है. लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे इनकी अगर हम देखें, कि मुझे मालूम है कि वो बिना बात के क्रिटिसाइज कर रहे हैं. मतलब मुझे पता है कि देयर इज नो नीड टू क्रिटिसाइज,
1: दैट्स फाइन, दैट्स द सिंपल थिंग. मुझे पता है, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट. मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है, वो बिना बात के क्रिटिसाइज कर रही है, तो फिर मैं हर्ट क्यों हूं. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे डीप सेल्फ अवेयरनेस, वो ये है कि आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं. अभी तक हम हर्ट क्यों बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में. आपने मुझे हर्ट किया, आपकी इस बात से मैं हर्ट हो गई, आपने ऐसा कहा तो मैं हर्ट हो गई. फंडामेंटल लॉ है, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते, कोई परिस्थिति मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते. आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात को सुन लेती हूं और उसके साथ मैं अंदर जो करती हूं, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था. आई हर्ट माई सेल्फ, यू डोंट हर्ट मी, आई यूज यू टू हर्ट माई सेल्फ, यू कांट हर्ट मी, आई एम सेपरेट, यू आर सेपरेट. मन को तकलीफ हो रही है ना, आप मेरे मन तक तो पहुंचे नहीं रहे. आप मुझे फिजिकली हर्ट कर सकते हैं, आप मुझे फिजिकली उठ के मार लीजिए, आप मेरे मन को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं. Do you have the power?
0: No, it means like when I say something to you, like
1: you say na, to you say it. बोल ही हुए ना आपके, मैंने उसको स्वीकार किया, अब मैंने उसके साथ क्या किया, वो तो यहां होगा ना काम. आपने मुझे हर्ट किया, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है. दिस इज डीप स्लीप एंड वी गो ऑन लिविंग आर लाइफ इन दिस स्लीप एंड दैट इज वाई वी आर विक्टिम. उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया. नोबडी कैन हर्ट मी, आई कैन यूज पीपल टू हर्ट माई सेल्फ, बट डोंट ब्लेम अदर पीपल, दे नॉट हर्टिंग यू, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ. सेल्फ रिस्पेक्ट विल बी
0: Who is being hurt, you know, like see, if you say something to
1: na, again it's the mind thought. Which is doing the work. Meri saas ne aisa kaha, sabke samne aisa keh diya, aisa to nahi kehna chahiye tha na, ab sab log mere bare mein kya sochenge, you know, it's my work, ye meri thought hai, apne aap ko kya samajhte hai, खुद तो वो आता नहीं है उनको, खुद तो उनको बनाना नहीं आता, मैंने जो बनाया उसको सबके सामने वो
0: कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं हो सकता,
1: ये कभी खुश नहीं होंगी. उन्होंने दो सेंटेंस कहे होंगे सिर्फ, हम कम से कम 200 सेंटेंस अपने आप को कहते हैं अंदर. यू नो वर्बली आप दो या चार सेंटेंस से ज्यादा किसी को नहीं कह सकते, लेकिन जो मन बातें करता है अंदर अपने आप से,
0: घंटों
1: तो घंटों और कितने दिन तो कितने सेंटेंस होते होंगे, एंड दैट इज कॉजिंग द पेन. द अदर प्रोसेस कुड बी, उन्होंने ये कहा, सी इट डजंट मीन के हम निग्लेक्ट करें. सपोज यू आर द मदर इन लॉ, ओके लेट्स सी इट राइट नाउ,
0: इग्नोर कर रहे
1: हैं, आई कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज हो सकता है कि आप, देखो दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे रियली सही मायने में करेक्ट कर रहे हो, या फिर आप जान पूछ के क्रिटिसाइज कर रहे हो. तो प्रोएक्टिव अप्रोच वुड बी, इन्होंने कहा कि ये काम ठीक से नहीं हुआ, लेट्स से आपने कहा ये कप ठीक से नहीं रखा हुआ, ओके तो वेरी डिटैच्ड चेक, क्या ये कप ठीक से रखा हुआ था, अगर नहीं आई एम सॉरी ये कप ठीक से नहीं रखा था, and thank you for teaching me, you know, proactive. अगर मैंने देख लिया कि वो कब ठीक से रखा हुआ है, इन्होंने जान पूछ कर सिर्फ सबके सामने मुझे वो करने के लिए इन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो फिर मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेरा कार्य था, जो मेरा रोल था, वो मैंने ठीक से प्ले किया. There is nothing that I have to change in that. आपकी कोई अपनी कॉम्प्लेक्सिटी थी अंदर, आप दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को
0: ऊंचा
1: दिखाना चाहते, क्योंकि ये भी एक बिलीफ है कि दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो हम ऊपर
0: हो जाएंगे,
1: विच इज द डीपेस्ट स्लीप. जितना हम नीचे दूसरे को गिराते हैं, हम बहुत ज्यादा नीचे उतरते जाते हैं, इवन इफ वी वॉन्ट टू सी के दूसरे लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी अगर यहाँ चार लोग और बैठे हो एंड आप सास है और आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो लोग पहले आपके बारे में सोचेंगे कि ये कैसी सास है, सबके बाद में भी तो बोल सकती थी. तो वी थिंक कि ये लोग सोचेंगे कैसी बहू है ना, इसको कुछ करना नहीं आता, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट. सब लोग सोचेंगे ये कैसी मदर है, ये बाद में भी तो बोल सकते थे.
0: दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ, यू नो, व्हिच वी एक्चुअली कंटिन्यू टू लिव,
1: वी कंटिन्यू टू डू इट. सो इफ आई द डॉटर इन लॉ नो इट, आई शुड बी ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना बंद कर दें कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ज्यादा हम सोचने लगते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. पहले इम्पोर्टेंट है मैं अपने बारे में क्या सोचूं. अगर मुझे पता है मैंने ठीक किया है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दे दिया था. आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, मुझे आप पर गुस्सा नहीं आएगा, मुझे आप पर रहम आता है. कि आप इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं मेरे सामने कि आपको इस तरह से करना पड़ रहा है, बट वी डोंट से दिस, we not to say this to the other person, लेकिन ये understanding दूसरे के लिए एक, जो आपने कहा ना सहानुभूति, compassion, हम understand कर ले कि दूसरा इस time ऊंचा नहीं उठ रहा, अंदर कोई डर है उसके.
0: लेकिन अगर हम कह देंगे तो अगेन हम हर्ट करने की कोशिश करेंगे.
1: ये कहना तो गलत हो जाएगा.
0: That's what I'm saying. You know, this is again
1: hurt.
0: You know, it's a process of, you know, giving it back.
1: See, हम दूसरे का ईगो नहीं कम कर रहे हैं, हम अपना कम कर रहे हैं. हम किसी और को नहीं, क्योंकि अगर हमने कह दिया तो वो और डिफेंसिव हो जाएंगे. कहेंगे अच्छा एक तो गलती की, ऊपर से उसमें मेरी गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सो यू विल रिएक्ट इवन मोर. इंटरनल प्रोसेस हमेशा अपना ही किया जाता है, किसी और का करने की कोशिश हमें नहीं करनी है. तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये होगी कि आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक, मैंने जो किया वो भी ठीक. सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर होंगे तो स्थिरता रहेगी, अपने आप को भी समझ पाएंगे कि मैंने जो किया ठीक, और आप जो कह रहे हैं उसका भी सम्मान रखते हुए ये फील करेंगे कि आप भी अपने दृष्टिकोण से, क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट सीट वो कप डिफरेंट लगेगा. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि हम दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देख पाते. हो सकता है ना यहां से ये ठीक लगा, मतलब ये एक बहुत स्थूल चीज है लेकिन हर परिस्थिति में, लेकिन आपके सीट पर बैठो तो ये गलत बैठा हुआ है शायद, तो शायद थोड़ा सा ठीक करना पड़े, तो दैट्स रिस्पेक्ट फॉर यू।
0: अवेकनिंग की जो बात आपने की, क्योंकि सुप्त अवस्था की बात कर रहे हैं, जब तक हम सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे नहीं चले थे तब तक हम ये जानते नहीं थे कि हम तो सोए हुए हैं एक्चुअली अंदर, और अंदर इतना अंधेरा हम सोचते हैं जहां की रोशनी होनी चाहिए। तो डीपेस्ट फियर्स की अगर हम बात करते हैं,
1: किसी भी मनुष्य में जो सबसे गहरा भय है वो है मृत्यु का, सबकॉन्शियस वेरी डीप। ये नहीं कि हम बहुत सारा दिन उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन इट इज फियर ऑफ डेथ, और फियर ऑफ डेथ इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द
0: बॉडी।
1: इस शरीर से इतना लगाव है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली, हमारा इस शरीर से इतना लगाव है, जो हमने कहा अटैचमेंट जब होती है तो हम अपनी आइडेंटिटी को उसमें खो देते हैं, तो हम आज क्या समझते हैं मैं कौन हूं। जैसे हमने कहा मैं, तो कौन सी पिक्चर सामने आएगी इस शरीर की, जबकि हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा पांव आज दुख रहा है तो मेरा है ना, फिर भी मैं कहते ये पिक्चर सामने आएगी, अपने अस्तित्व को इसके अंदर खो दिया, आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द बॉडी, आई थिंक आई एम द बॉडी, और इसीलिए मैं उस भय में जीती हूँ कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। एक्चुअली मुझे कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो इस शरीर को होगा, और वो होगा भी, वो कितना भी डर में रहे, जिस दिन वो होना है वो होना है, लेकिन अटैचमेंट है ना, तो वी लिव आवर लाइफ इन दैट फियर। डिटैचमेंट ये है कि मैं तो एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर को यूज करती हूँ। जैसे ये डिटैचमेंट आ गया, मृत्यु का भय फिनिश्ड, जहां मृत्यु का भय खत्म हो, और ये सिर्फ समझ के नहीं, अनुभव से होता है स्टेप बाय स्टेप, जहां मृत्यु का भय खत्म हो जाता है वहां धीरे धीरे बाकी सारे भय भी खत्म हो जाते हैं।
0: सिस्टर शिवानी, जो हम ये पूरा प्रोसेस बात कर रहे हैं जागने की, अभी तक जब भी हम बात करते थे जागने की, डिटैचमेंट की, आई द सोल को रियलाइज करने की, खुद को पहचानने की, तो मुझे लगता है बहुत से दर्शक और मैं भी कहीं ये सोचती थी कि ये थोड़ा जिंदगी के लेटर स्टेज में आना चाहिए ये पूरा जो भी प्रोसेस है, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इसका मतलब तो हम जिंदगी जो है वो सोते हुए गुजार देते हैं।
1: सही बात।
0: हम अगर ये कह रहे हैं कि हम सुप्त अवस्था में हैं, तो अवेकनिंग कब होगी? अवेकनिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड अवेक?
1: द अर्लियर द बेटर। बचपन से ही अगर मुझे ये समझ मिल जाती कि मैं कौन हूँ और ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये क्लैरिटी अगर हो जाती तो फिर अटैचमेंट बिल्डअप होने, अभी क्या हो रहा है, अटैचमेंट्स इतनी सारी बिल्डअप हो रही है, सो वी आर हैविंग टू गो बैकवर्ड, सारी बिल्डअप हो गई, फियर्स बिल्डअप हो गए, अब वी आर हैविंग टू डू द हार्ड वर्क कि वापस उनको अंडो करना है। लेकिन अगर बचपन से ही वो अंडरस्टैंडिंग होती मैं कौन ये मेरा, अटैचमेंट बिल्डअप नहीं होती ना। बचपन में हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो क्या क्या एक दूसरे को नहीं कहते, कहते हैं भूल जाते हैं, वी आर नॉट सेंसिटिव, जैसे हमने कहा हर्ट नहीं होते। जैसे जैसे बड़े होते हैं इतनी सारी चीजें, लेबल्स, पोजिशंस, स्टेटस, रिलेशनशिप्स, जितने बढ़ते जाते हैं अटैचमेंट्स बढ़ती जाती है, मैं अपने अस्तित्व को खोती जाती हूँ, उतना ईगो, बच्चे में कोई ईगो नहीं होता एब्सोल्युटली, इसलिए बोलते हैं गो बैक टू योर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मतलब अपने ईगो को निकाल दो। बच्चे में कोई ईगो नहीं है क्योंकि उसके पास कोई अटैचमेंट नहीं है ना, उसने अभी तक उस तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं बिल्डअप की। जब हम बड़े हो जाते हैं हम कहते हैं उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे, मैंने कुछ सुना ऐसा हो रहा था, क्यों? क्योंकि अटैचमेंट हो गई है, एक इमेज बना ली है, मैं कौन हूँ, एक प्योर कॉन्शियस एनर्जी, वो भूल गया, इमेज बिल्डअप हो गई है, मैं एक शरीर हूँ, मैं एक वुमन हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक बहुत अच्छी इंजीनियर, मैं एक ये इतनी सारी चीजें जो हूँ, तो हर टाइम आई एम लुकिंग फॉर ये कौन है जो मेरे इमेज को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि आपका काम अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा इमेज है कि मेरा काम सबसे बेस्ट है, तो जैसे ही किसी ने कुछ आया मेरे इमेज को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अगर ये डिटैचमेंट बिल्डअप हो गई थी कि मैं एक एनर्जी हूँ, ये तो मेरा सिर्फ एक रोल है, ऐसा नहीं, ठीक है, चेंज, लाइफ वुड बी वेरी इजी।
0: वंडरफुल। तो यू सेड ये जो अवेकनिंग है, ये जागरूकता है, ये जो जागना है, ये हमें कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, और बचपन से ही अगर हम इस प्रोसेस पे चले तो अटैचमेंट होंगे ही नहीं। लेकिन अब इस वक्त बचपन में लौटना मुश्किल है, अंडू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या जागा जा सकता है?
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल.
0: किस तरह जाग पाएंगे?
1: हम लोग सभी तो जागने की कोशिश नहीं कर रहे नंबर वार, हम लोग सब यही तो ट्राई कर रहे हैं कि अपनी नींद से जागे.
0: बिल्कुल, तो अगली कड़ी में हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे.
1: जरूर.
0: बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू.
0: जान लिया हमने बहुत कुछ अपने बारे में, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जिस सुप्त अवस्था की हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुद को जानते हुए भी सोए हुए हैं, तो भाई जागना कैसा है ये जानने की कोशिश अगली कड़ी में जरूर करेंगे. लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर खुद को तलाशने के इस सफर को जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से सुप्त अवस्था से हम जागृत अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।

वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं फिर से, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो।

0: क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम। उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे? और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे, वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं। सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे, तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी, दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है, और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है, ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई, चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा, उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। अत्याचार जब सीमाओं को लांघ जाए तो प्रतिकार की भावना का भड़क उठना लाजमी हो जाता है। फिरंगियों के अत्याचार ने भारतवासियों को आजादी के संग्राम में धकेल दिया था। लोग जान गए थे कि राजा या स्वामी से बड़ा स्वदेश होता है। कोई भी विदेशी उनकी जमीन पर बलपूर्वक रहे, ये उन्हें गवारा न था। स्वदेश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए वे अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हो गए और आजादी के संग्राम का इतिहास क्रांतिकारियों की शौर्य गाथाओं से भर गया। ये संग्राम एक ऐसा सांझा प्रयास बना जो सांझे संकल्प और निश्चय के साथ लड़ा गया। इस संग्राम ने देश पर मर मिटने की बलिदानी परंपरा को विकसित किया था।

0: अभी आप सुन रहे थे आजाद कुंवर प्रताप चंद्र की एक रचना।
1: ये वतन
0: ये घटना उन दिनों की है जब क्रांतिकारी वीर सावरकर अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काट रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें टीबी का रोग हो जाने की आशंका जताई थी। सावरकर महीनों बिस्तर पर लेटे रहे और आहार के तौर पर वे सिर्फ थोड़ा सा दूध लेते थे। कभी कभी अपनी कमजोरी की हालात से परेशान होकर वे मौत की कामना किया करते। अपनी मृत्यु की गंभीर छाया में उन्होंने एक कविता लिखी थी। सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पर क्यों नहीं आती।

आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है कभी भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, इस दिन के किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए, श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके आश्रय कर ध्रुव पद का संतन उसके, आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के थड़ थड़ और बढ़ भागे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी आ मृत्यु आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे तापसी नागराज और मुरलीधर नागराज। संगीतकार थे तापसी श्रीधर नागराज। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। मैं ये सोच रहा था कि आपकी बात सुन के एक्सेप्टेंस तो कर लिया, टॉलरेट भी कर लिया, लेकिन एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेट के बाद आपने आपके एक लेक्चर में कहा था कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, ठीक है, टॉलरेट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसको आप अच्छी सी साकार, जो आपकी भाषा में दुआएं दो, उसको गुड विशेस भेजो, उसको प्यार भेजो, इज दैट पॉसिबल?
2: व्हाट इज द अदर ऑप्शन? क्या भेजेंगे उसके अलावा?
1: कुछ भी नहीं भेजेंगे, बात ही नहीं करेंगे।
2: कुछ नहीं भेजें, ये होता ही नहीं कभी।
1: अच्छा,
2: जिसके साथ कुछ
1: अनबन
2: बोलो या अनप्लेजेंट या समथिंग इवन बिगर देन दैट, किसी के साथ भी अगर ऐसा कनेक्ट बना
1: हम
2: है,
1: हम कहते हैं किसी ने हमको बिजनेस में धोखा दिया,
2: कुछ भी रिश्ते में, बिजनेस में, प्रोफेशनली, आज कोई डॉक्टर पेशेंट को धोखा दे देता है, गलत हो जाता है, तो जहां एक ऐसा कनेक्ट है, जहां ऐसा कुछ हुआ है, हम उनके बारे में न सोचें, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैम, फुल स्टॉप, ऐसा तो होता ही नहीं। अगर वो भी हो जाए कि हम उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो ब्यूटीफुल, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रही है, जा नहीं रही, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि हम सोचते नहीं, क्योंकि कुछ बना है कनेक्ट, कुछ हुआ है, मतलब थॉट तो आने ही वाली है। अगर हम अवेयर

0: सोचना होगा कि हमें इस सिचुएशन को कैसे देखना है. एक ब्रह्मा कुमारीज में हमारी बहुत सीनियर सिस्टर जिनको हम दादीज कहते हैं, तो एक दादी जी मतलब जो बहुत ऑलमोस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो वो दादी जी को ब्रेन में ट्यूमर की तरह कुछ हुआ. तो उनके इलाज के लिए एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत सीनियर न्यूरोसर्जन के पास गए. उनका नाम था डॉक्टर भगवती. एवरीथिंग सीम्ड कि वो ठीक हो जाएगी चीज, लेकिन सर्जरी के दौरान जैसे हो सकता है स्पेशली ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं, तो वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई एंड वो दादी जी वो आत्मा ने शरीर का त्याग किया. तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे भाई बहने हैं, सो देयर वाज अ काइंड ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग. एंड बहुत लोगों ने जैसे भगवान को भी परमात्मा को भी जैसे प्यार से नहीं कहते कि ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया, तो उस समय परमात्मा ने जो ट्रांस मैसेंजर के थ्रू जवाब देते हैं बहुत प्यारी लाइन बोली, स्टेज विद मी लाइक दिस इट्स फिट. एंड जो लाइन भेजी वो थी, जो हुआ इसमें ना भगवान की गलती ना भगवती की गलती है.
1: वाह,
0: ये तो ड्रामा में उस आत्मा का हिसाब किताब ऐसा था, ये होना ही था. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन मार्क नहीं अराइज होना चाहिए उसके ऊपर.
1: हाउ नाइस.
0: बड़ी से बड़ी चीज भी हो जाए ना भगवान की गलती, क्योंकि हम भी भगवान को बहुत बार कह देते हैं ना
1: डॉक्टर की,
0: ना किसी आत्मा की या किसी परिस्थिति की गलती, ये ड्रामा में ऐसा होना ही था क्योंकि उस आत्मा का वैसा हिसाब किताब था. विच मीन्स कि इवन इफ लाइक इन दिस केस, इवन इफ वी से देयर वाज अ लिटिल मिस्टेक और देयर वाज समथिंग दैट वेंट रॉन्ग, लेकिन वो जो गलती भी होती है वो गलती भी इसीलिए होगी क्योंकि मेरे कार्मिक अकाउंट में वो गलती होकर मेरे साथ वैसा होना, वो मेरी डेस्टिनी में मैं आत्मा लिख कर लाई हूं, इसलिए उसको किसी की गलती नहीं कहेंगे. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे बैठे हैं और आपका पैर या आपकी कुर्सी ऐसे बीच में आ गई, मतलब आप गलत बैठे हैं. यू नो यू शुड हैव टेकन केयर कि आप कैसे बैठे हैं. और आपकी किसी गलती से इफ आई ट्रिप, तो इमीडिएट रिएक्शन पुराना जो आएगा वो क्या, आपकी गलती से वो गिर गए, आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था. परमात्मा कहेंगे हमें, नहीं, तुम्हारा आज उस तरह से गिरने का हिसाब किताब था. अगर वो ना होता तो सामने वाला कुर्सी भी वैसे रखता ही ना, इतना एक्यूरेट है वो ड्रामा.
1: तो ये एक्सेप्टेंस है,
0: ये एक्सेप्टेंस सिर्फ
1: अंडरस्टैंडिंग,
0: ये एक्सेप्टेंस सिर्फ अपने आप को ये करने के लिए नहीं है, ये एक फैक्ट है. कार्मिक अकाउंट जब समझ में आ जाए तो समझ में आ जाता है कि ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है कि ये ऐसा होना ही था. जस्ट द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू समवन, जो एक जगह से निकले 5 लोग कार में, एंड जस्ट टर्न किया ऐसे थोड़ा सा आगे जाके एंड उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ. उस एक्सीडेंट के अंदर उस कार में 3 लोगों की डेथ हो गई. इज दिस यंग मैन इज अ फ्रेंड, 30-35 years old, उसकी वाइफ, पेरेंट्स, वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, सो वो जो बच्चा गर्भ में था, तो ये व्यक्ति बच गया. तो जब ये व्यक्ति जो बच गया, वो सारा दिन क्या कहता है और क्या सोचता है, अगर हम 2 मिनट बाद निकले होते तो, अगर हमने एक टर्न ऐसे के बजाय ऐसे लिया होता तो. उस दिन उसने इतना तक कहा, कहता अगर मैं रुक के एक ग्लास पानी पी लेता तो.
1: और उस वक्त किसी ने बोला भी होगा एक मिनट रुको सुनो, तो बोले नहीं रुका होगा फिर.
0: यस yes. तो हम कितना सोचते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली वैसे थॉट्स आएंगे, लेकिन कार्मिक अकाउंट हमें सिखाता है कि आप जाएंगे ही एकदम एक्यूरेटली अपने हिसाब किताब के पास, क्योंकि वो वैसा ही एग्जैक्टली होना है. होना ही है, आपके मन बुद्धि बिल्कुल एक्यूरेटली उसी डायरेक्शन में चलेगी, बिकॉज यू हैव टू वॉक टूवर्ड्स योर डेस्टिनी. आपको जाना ही होगा उस तरफ। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा कुछ नेगेटिव है।

0: कई बार कुछ एकदम बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव होता है जिसके लिए हम कहते हैं अरे अगर हम 8 मिनट लेट निकलते तो हमें ये ना मिलता, लेकिन हम 1 मिनट लेट नहीं निकल सकते थे क्योंकि हमें वो चीज मिलनी ही थी। इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं उठ सकता, इसीलिए व्हाई हाउ वेयर व्हेन ये उठ नहीं सकता क्योंकि एवरी सीन इज एक्यूरेट। इसी तरह से हर आत्मा का संस्कार भी एक्यूरेट। जब ये दो पॉइंट्स इतना इतना कूट के भर जाएगी तब हर सीन को एक्सेप्ट करना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट।
1: जब मुझे फिल्म ज्वाइन करना था मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था तो एक बार मैं किसी से मिलने गया, वहां कोई मुझे मिला कि वही भाई एक आदमी है फलानी फलानी जगह लंदन से है, वो नए एक्टर ढूंढ रहे हैं। तो मिलने किसी और से गया था, उससे मिलके कोई और निकल रहा था बाहर डोर से, उससे जो मिलके निकल रहा था उससे मैं बोला क्या हाल है कैसे, मैंने बोला मैं तो स्ट्रगल करके पागल हो रहा हूँ। बोले तू उधर जाके क्यों नहीं मिल लेता, और फिर वहां से मेरा करियर बन गया।
0: दिस इज व्हाट इट इज। और अगर हम अपनी जीवन को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखे ना, ऐसे कितने सीन्स आए होते हैं, कितनी चीजें जिसके लिए हम चेक करेंगे, हम कहेंगे अरे ऐसे कर दिया उस दिन अचानक, ऐसे कर देते तो। लेकिन जो प्लेजेंट सीन्स होते हैं, जो प्लेजेंट सीन्स होते हैं उनको देख के सोच के तो अच्छा लगता है कि अरे ऐसे किया ना तो एकदम से ऐसे हो गया। लेकिन जो थोड़े से नॉट प्लेजेंट सीन होते हैं उनमें भी हमें सेम इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी वो उतना ही एक्यूरेट है। जैसे आपने एक बार कहा था कि मैं अपने भाई को गाड़ी में बिठाया और निकले और एक्सीडेंट हो गया, तो मन तो कितने साल क्वेश्चन करेगा उस चीज को।
1: जाने से पहले यहाँ से एक सामने रॉड जिसको पकड़ के गाड़ी में बैठते, स्लाइडिंग डोर्स थे साइड के उसके, वो ऐसे मैंने लगवाई फिट हाथ पकड़ने के लिए क्योंकि ये अधूरी लग रही थी, पता नहीं क्यों निकल गई थी क्यों गिर गई थी। तो मैकेनिक को मैंने बोला यार ये लगा दे, उसी से जाके वो माथा लगा उनका। वो मुझे गिल्ट, क्यों लेके गया गिल्ट, रास्ते में 1 मिनट मैं क्यों नहीं गाड़ी चलाया गिल्ट, गिल्ट और दर्द और पेन कम से कम 3 साल रहा।
0: 3 years।
1: हाँ, 3:45 बजे रात को एक्सीडेंट हुआ था। हर रात 3:45 बजे मेरी पूरी बॉडी भीग जाती थी, कुर्ता और लुंगी पहनता था उस जमाने में, वो सारे ऐसे लगता था कोई बारिश में से आ रहा हूँ। तो मेरी वाइफ इतनी थक गई थी कि एक बाल्टी रखती थी और एक जोड़ा रखती थी रोज, तो बाल्टी में मैं बकेट में गीले कपड़े डालता था नए पहनता। 3 साल के बाद ठीक हुआ।
0: दिस इज व्हाट इट इज। ये हमें, अब जैसे आपने कहा ना, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कपड़े भी नहीं उठाए, फोर्सफुली गाड़ी में डाला। उसके बाद जो आपने कहा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हैंडल जो ऐसे ही था, इट कुड हैव स्टेड लाइक दैट ना,
1: डिक्की में पड़ा था,
0: पड़ा था ना, लेकिन उसको भी निकाल के लगाया
1: और उसी से जाके उनको यहाँ लगा
0: ना। जब हम इन चीजों को देखते हैं ना, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट द फैक्ट ये है कि हम एक्चुअली वो सब कुछ करते हैं सो दैट वी आर गोइंग टू वॉक टूवर्ड्स आर कार्मिक अकाउंट। इट्स एज इफ हम खुद ही करते हैं वो सारा कुछ, बिकॉज वो एग्जैक्टली वैसे होना ही था। वो डंडा यहां लगना है इसलिए आपको वो थॉट आएगा ही कि वो बार को लगाने के लिए।
1: 2.5-3 साल के बाद कब ठीक हुआ है मालूम है सिस्टर, जब मुझे फैमिली ने आके बोला कि बार बार एवरी डे मेरा भाई गुरु नानक जी को बोलता था, मंदिर में बोलता था कि सुरेश ओबेरॉय मेरे 2 बच्चे संभाल ले, मेरी जान तू छोड़ा, मेरे को इस दुनिया से उठा। देखो वो मांग भी रहे थे ये बात को, और उन्होंने वो चाहते थे कि मैं उनके बच्चों की परवरिश करूं और कोई भाई नहीं करे। इट्स काइंड ऑफ अ विल।
0: या राइट, इट्स काइंड ऑफ जो होने वाला है ना वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। ये भी तो है, जो एक्चुअली होने वाला है वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। जो आत्मा सोचती रहती है वो सोचती भी इसलिए क्योंकि वो होने वाला है।
1: ऐसा नहीं है कि सोचने से मैनिफेस्ट हुआ।
0: नहीं,
1: हो सकता है, दोनों भी करेक्ट है ना।
0: सोचने से अगर मैनिफेस्ट होता है, इस केस में नहीं, बिकॉज इट्स एन एक्सीडेंट। सोचने
1: जब
0: से
1: मैं आपके बारे में गलत सोचूं, आपको ज्यादा सही सोचो जाता है तो
0: हाँ, आप मेरे बारे में सोचे वो

0: बीच होती है वाइब्रेशन, लेकिन आप सोच के एक एक्सीडेंट कैसे क्रिएट करेंगे?
1: एक्सीडेंट नहीं,
0: हमने सोच के एक एक्सीडेंट क्रिएट किया ना इस केस में।
1: नहीं, उन्होंने सोचा था ना बार बार कि मुझे जाना है उठा।
0: थॉट आती ही इसीलिए है कि मुझे जाना है। सी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आर थॉट्स हमारी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट में वो लिखा हुआ है। वो थॉट्स हमें आनी भी शुरू हो जाएंगी, हमारा मन उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारी थॉट्स हैं, हमारे प्रेजेंट बिहेवियर्स। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हम कभी भी उसको पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते अच्छा ऐसे इसलिए हुआ। बट वेन वी अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, जो आपने कहा गिल्ट रहा, स्ट्रेस या जो भी वो इफेक्ट,
1: शॉक
0: ट्रॉमा, उस सिचुएशन का इतना है कि डीप स्लीप में भी
1: रात के 2:45 बजे
0: एग्जैक्टली उस टाइम पे माइंड उस एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस कर रही है। इसीलिए जो आपने कहा ना पूरा गीला भी हो जाना, क्योंकि इतनी एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है कि उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पर भी पड़ रहा है एग्जैक्टली उतने बजे डीप स्लीप में। तो आप सोचे कि इस ट्रॉमा का कितना डीप इम्पैक्ट था माइंड के ऊपर, और वो इसलिए था क्योंकि आत्मा उस समय इस ज्ञान की वो पॉइंट को अप्लाई नहीं कर पाती कि उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट के हिसाब से उस आत्मा को इस समय और इस तरह से जाना ही था।
1: ब्रांड न्यू जापानीज कार, अ बिग वैन, उसका टायर पंक्चर होना मैंने पहली बार सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं था। और वो टायर पंक्चर होना हमको तो आता भी नहीं था, ड्राइवर को साथ लिया हुआ था। उसने निकलवाया, किसी को बुलाया, उतना पीरियड खराब टाइम गया उसका पंक्चर होना, फिर आगे फिर चाय पीना, पूरा वो टाइम तक पहुंचते गए, वहां तक पहुंचे कि एग्जैक्टली वो टाइम पे वो क्या कहते हैं वो जो एसटी वो बस आती जिसमें
0: अभी आप जैसे कह रहे हैं ना एग्जैक्टली वो टाइम पे, दिस इज हाउ एग्जैक्ट इट इज गोइंग टू बी।
1: इधर से हमारा जाना, उधर से वहां आना, और एक ट्रक
0: बीच में रुका हुआ,
1: रोकना,
0: क्योंकि इट्स लाइक अ स्क्रिप्ट। जो कहते हैं ना एवरीथिंग इज प्री डेस्टिंड,
1: सेकेंड टू सेकेंड माइन्यूटेस्ट,
0: कहते हैं ना सब कुछ प्री डेस्टिंड है। तो जब प्री डेस्टिंड होगा तो मतलब स्क्रिप्ट कितनी एक्यूरेटली लिखी होगी। अगर हम दो लोग यू नो डिसाइड करें कि हम इतने बजे इस जगह पर मिलते हैं, ठीक है, डिसाइड करके फोन करके फिर निकलने के टाइम फिर फोन करके आप निकले क्या मैं भी निकल रही हूँ, सब इतना कोऑर्डिनेट करके भी निकले ना तो भी हम इतनी एक्यूरेटली नहीं मिलते जितना ऐसे टाइम पे मिलते हैं जब ये चीजें होती हैं। क्योंकि ये जो एक्यूरेसी है एक बहुत बड़े लेवल की हो रही है। वी हैव टू वॉक टूवर्ड्स आर कार्मिक अकाउंट, वेदर इट्स अ प्लेजेंट वन और वेदर इट्स एन अनप्लेजेंट वन, हम जाएंगे, वी विल वॉक टूवर्ड्स इट। लेकिन एक्सेप्टेंस मीन्स जो हुआ वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल सही था अकॉर्डिंग टू द सोल्स कार्मिक अकाउंट।
1: बट दैट सोल वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉन्टेड इट, वो चाहता था कि सुरेश और एक बच्चे,
0: क्योंकि उसके कार्मिक अकाउंट में वो लिखा था कि अब उसे यहाँ नहीं कहीं और जाना है।
1: बट वो चाहते थे ना कि वो जाके मेरे साथ रहे बॉम्बे में पहले, लेकिन मैं नहीं जाऊँ, मुझे जाना है।
0: तो उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट में जो लिखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम ऐसी चीजें, और ये हरेक के जीवन में हुई है सिचुएशंस, बातें ऐसी हरेक के जीवन में हुई है, सिर्फ अब एक्सेप्टेंस मीन्स उसको वहीं के वहीं फुल स्टॉप लगाना, उसके ऊपर लंबा चिंतन नहीं करना। जब ये हुआ अगर आप उस समय बार बार अपने आप को ये समझाते, ये ज्ञान समझ में आता उस समय, इसमें मेरी गलती नहीं,
1: मैं तो बार बार कोसता था अपने आप को,
0: दैट इज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। देखो एक चीज
1: भगवान को कोसता था,
0: वही जो आपको शुरू में बताया ना, जो परमात्मा ने कहा न भगवान की गलती न भगवती की गलती। तो ये अब हमें, हम सबको अपने जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स देखने हैं, छोटे छोटे भी अगर देखें, बड़े भी हैं अगर किसी के जीवन,
1: तो बहुत बड़ा,
0: हर एक के जीवन में होते हैं, एंड दे आर नॉट नेसेसरीली ऑलवेज अनप्लेजेंट. बहुत सारे प्लेजेंट सिचुएशंस ऐसी होती हैं.
1: सिस्टर्स को मैं अनप्लेजेंट बोलूं कि प्लेजेंट बोलूं कि मुझे इतना दुख हुआ 3 साल में कि मैं ढूंढता रहा कि कौन है भगवान, दुनिया कौन है, मैं कहा हूं. और मेरा ईगो इतना हाइट पे था, इतनी हाइट पे था कि हाईएस्ट ईगो इन द वर्ल्ड जिसको किसी को बोलो. और गुस्सा, ईगो, अहंकार, भाव, वो कुछ कुछ था, वो सारा टूट के क्रैश होके गली गली गांव गांव में गुरुओं तक ढूंढता गया, ज्ञान ढूंढता गया.
0: इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है जिसमें परिस्थिति में कल्याण नहीं दिखता, कि परिस्थिति में कुछ अच्छा नहीं हुआ, जबकि ज्ञान की लाइन कहती है ड्रामा की हर सीन में कल्याण है. लेकिन परमात्मा इसीलिए सिखाते हैं जब बाहर कोई कल्याण नहीं दिखता तो भी उस परिस्थिति में ये कल्याण है कि यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दैट सिचुएशन. वो परिस्थिति आपकी किसी शक्ति को बढ़ाने के निमित्त जरूर बनेगी. ये कल्याण है उस सिचुएशन के.
1: मैं स्पिरिचुअलिटी में आया इसी वजह से.
0: दिस इज इट. तो बहुत सारी चीजें होती हैं. जब हम अपनी जीवन की इन सीन्स को देखेंगे हमें दिखेगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी हुई है.
1: दैट शॉक, दैट ट्रामा, दैट वो झटका मेरे लिए जरूरी था.
0: लेकिन ऑल्सो बट वी हैव टू सी नाउ कि जो आपने कहा कि 3 साल तक उसका डीप इम्पैक्ट कितना माइंड एंड बॉडी पर पड़ा. जब हम ये देखते हैं हमें ये समझ में आता है कि सीन को रेजिस्ट किया, मतलब नहीं एक्सेप्ट किया कि ये क्यों हुआ ऐसे, तो उसका इफेक्ट कितना लंबा चला.
1: नर्व्स ब्रेकडाउन हो गया था मुझे
0: 3 साल तक. इतना दर्द क्यों? क्योंकि हम उस सीन के डिनायल मोड में चले. हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सीन क्यों हुआ था. तो क्वेश्चंस गिल्ट दैट प्रोलोंग्ड द पेन. अदरवाइज इट वुड हैव बीन ओनली पेन ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन. उतना दर्द होता. लेकिन ये दर्द इतना लंबा क्यों चला? बिकॉज हमारे पास ड्रामा की, ज्ञान की वो पॉइंट नहीं थी कि ड्रामा की हर सीन हरेक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार एक्यूरेट है. ये लाइन इतनी पावरफुल है कि हमें हर सीन में फुल स्टॉप लगाना सिखा देती है. कोई प्रश्न उठते नहीं उसके बाद चित्त के ऊपर. क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों. वी कैन गो ऑन क्यों हुआ. इवन लाइक यू सेड गिल्ट, कई बार अपने आप से हमारे से कोई गलती हो जाती है. एक्सेप्टिंग सिचुएशंस, एक्सेप्टिंग पीपल, वॉट अबाउट एक्सेप्टिंग माई ओन सेल्फ. हमारे से भी गलतियां होती हैं.
1: मैं कहाँ एक्सेप्ट किया अपने आप को? अपने आप को तो खोजता रहा, तो क्यों किया ऐसा, तो क्यों फोर्स किया, क्यों लाना था.
0: अपने आप से भी अगर कुछ हो जाए, बड़े से बड़ी गलती हो जाए, ये तो खैर गलती नहीं कहेंगे इसको, ये तो अनइंटेंशनल है, लेकिन गलती भी अगर हो जाए हमें उस गलती के बाद आगे मूव होना है. कई बार एक गलती के बाद हम इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि उसके बाद आगे मूव होने में बहुत डिफिकल्टी होती है. क्यों हुआ ये मेरे से? अपनी गलती को भी एक्सेप्ट, अपने संस्कार को भी एक्सेप्ट, अपनी आदत को भी एक्सेप्ट. जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते.
1: एक्सेप्ट करेंगे तो चेंज करने का सवाल कहां के पैदा होता है?
0: एक्सेप्ट करेंगे मीन्स इस क्षण तक ये मेरे अंदर था, इट्स फाइन, आई हैव कैरीड इट. एक्सेप्ट क्यों है, क्यों था, मैं हूं ही ऐसा, मैंने ऐसा ही किया, मैं बार बार ही ऐसे करता हूं. ये करने से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है. एनर्जी डिप्लीट होने से जो फ्यूचर में हम सोल्यूशन लाना चाहते हैं कि आगे से मुझे नहीं करना है, उसके लिए जो ताकत चाहिए वो गिल्ट क्रिएट करके ही खत्म हो जाती है. That's why it's very important. Acceptance only means, acceptance doesn't mean कि situation वैसे के वैसे रहेगी, मैं वैसे के वैसे रहूंगा, लोग वैसे के. Acceptance doesn't mean that. Acceptance means मेरे मन में अपने लिए, दूसरे के लिए, सीन के लिए कोई negative thought, कोई question mark, कोई भी प्रश्न अब नहीं होगा. मेरा मन अब सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पर वर्क करेगा कि हाँ ये ऐसा है, अब क्या करना है. हाँ मेरे अंदर ये आदत है, अब क्या करना है. सिचुएशन हाँ ऐसी है, अब बताओ क्या करना है.
1: दैट मीन्स सोल्यूशन.
0: That means no wastage of thinking.
1: Only solution.
0: तो कितनी एनर्जी बची, हमारी कितनी एनर्जी

0: जी बच्ची, मेरे अंदर ये बहुत गलत आदत है। हाँ है, तो आज से क्या करना है? लाइक दिस, मेरे से ये इतना बड़ा पाप हो गया, आगे से क्या करना है? दिस इज इट। लेकिन क्यों हुआ करने से वो गिल्ट में इतनी पावर डिप्लीट होती है, एंड फिर हम जो सोल्यूशन के लिए पावर चाहते थे वो पावर हमारे पास नहीं होती है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट करने की शक्ति है, ये हमें हमेशा, जो आपने पिछली बार कोटेशन पढ़ी, हमें सोल्यूशन और फ्यूचर में एक चेंज लाने के लिए उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। और रेजिस्ट जो हम करेंगे वो हमेशा हमें पास्ट में अटका के रखेगी। जैसे आपने कहा ना, 3 साल वो चला, एक्चुअली आप 3 साल उस ट्रॉमा के पास्ट में ही अटके हुए थे।
1: तब तक जहाँ ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट तकलीफ हो गई, क्या कहते हैं उसको, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, कितनी प्रॉब्लम्स हुई।
0: ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन लैक ऑफ नॉलेज, ओनली बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमने उस चीज का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी वजह से हुआ। वेयर एज द ट्रूथ वॉज, उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट ऐसा था, मतलब वो आत्मा की स्क्रिप्ट में ही वो लिखा हुआ था। हमारी स्क्रिप्ट्स एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड है ना, उनके स्क्रिप्ट में अगर लिखा था कि उन्होंने ऐसे जाना है, तो उनके साथ आपके स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि गाड़ी में आपने उनको बिठाना है। कार्मिक अकाउंट क्यों बोलते हैं?
1: 2-3 साल तक जब लोग देख रहे थे, तो एक डॉक्टर हमारे साथ शूटिंग कर रहे थे, एक डॉक्टर लागू एक्टर, उन्होंने बोला, सुरेश आई डोंट वांट टू हर्ट यू, और मैं ज्यादा कोई रूड नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुम जो इतना सोच रहे हो ना, तुम क्या भगवान हो? तुम क्या अपने आप को समझ रहे हो कि तुम स्थिति बना सकते हो, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, किसी के कर्म क्रिएट कर सकते हो, किसी की जिंदगी लिख सकते हो?
0: और भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। कोई आत्मा तो खैर कुछ भी नहीं कर सकती उसमें, लेकिन परमात्मा कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था वो चीज होने से, क्योंकि वो चीज हर एक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही होनी है। इसीलिए मुझे वो लाइन हमेशा इसलिए बहुत याद रहती है, ना भगवान की गलती, ना उस इंसान की गलती, वो ड्रामा में कार्मिक अकाउंट के अनुसार सीन एक्यूरेट था, फुल स्टॉप। तो ये पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एडजस्ट, जिसको हम कहते हैं समाने की शक्ति, इसके बारे में मुरली में परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा के महावाक्य वो एक बार सुनते हैं। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी, मतलब थॉट में भी, किसी की बातों और भाव का आंशिक रूप भी समाया ना हुआ हो, मतलब मन में कोई भी किसी की बात का, किसी परिस्थिति का एक भी थॉट ना आए। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाएं जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं, ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। मतलब कोई अकल्याण का बोल भी बोले, हमारी स्थिति इतनी स्टेबल है, इतना अनइन्फ्लुएंस्ड होंगे हम, इतना एक्सेप्ट कर लेंगे उनको कि वो अकल्याण का बोल जैसे था ही नहीं, तो वो उस स्टेज को कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्टेज। मतलब अपना भी कल्याण किया, अनेकों का भी कल्याण किया।
1: ये भी तो विश्व ही है।
0: ये भी विश्व ही है, वेरी ट्रू। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकंड में उस अवगुण को भी गुण में बदल दे, क्योंकि अवगुण का इन्फ्लुएंस ही नहीं हुआ हमारे ऊपर। जैसे आपने शुरू में कहा कि कोई हमारे साथ गलत करे उसको भी दुआएं दे, कि उस अवगुण का हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। नुकसान को फायदे में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें, ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाले स्वयं कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, सिर्फ समाने की शक्ति से, पावर टू एक्सेप्ट।
1: ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: Everything that is happening to us was predestined. Based on our past karma, this consequence was destined for us. We cannot blame God or any soul for what happens to us. We had chosen this consequence and it is our responsibility. We cannot create questions on any scene happening in our life. Every scene unfolding before us is accurate. It is fixed in the script of the drama of our life. How we respond to that scene now is our present choice. Accepting the scene of life's drama means understanding that everything is happening accurate. This is exactly how it was meant to be. Our thoughts, other people and situations will manifest in that way to make it happen the way it is meant to be. Even if we have made a mistake or have a difficult sanskar, we need to accept it. Accept it means understand we have carried the sanskar. Understand the mistake that happened was a karmic account, and now focus on what to do next. Guilt and regret depletes soul power. Accept and move towards transformation.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने के तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, व्हेरेवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वांट, सो देन इट्स माय चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हुआ तुमसे कल भी सामना कल तो जानोगे दिल वाला ना दिल है कोई अब तो मानोगे होगा तुमसे कल भी सामना।

अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

0: रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो।
1: तुमने पुकारा और हम चले आए। जान

0: सुनते जाना।
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
0: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
1: बाबू आना, सुनते जाना।

0: अरे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जानी कालती मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीस जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जा।

0: और जब सवेरा होगा तो हंसेगा सोने पर।
1: किसी के रोने से हंसना अच्छा नहीं।
0: इसलिए हंसेगा कि महज एक सपना रुला गया।
1: जो सपना देखता है वही जानता है उसको टूटना क्या होता है।
0: जब सपना टूट जाए तो आंखें खोल लेनी चाहिए।
1: क्या देखने के लिए? अंधेरा?
0: नहीं, ये देखने के लिए कि रात बीत रही है, सवेरा जरूर होगा।
1: तो भी जख्म जो है उसे भरते भरते वक्त लगता है।
0: इलाज करने से जल्द भर जाता है।
1: डॉक्टर बनकर आए हैं आप?
0: ऐसे जख्म के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, दोस्त की होती है।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही।